ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने को हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आप आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण सुन रहे हैं। थोड़ी देर में प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ

0: लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

बड़ा ही सुंदर भजन आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज़ में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लखबीर सिंह लखा की आवाज़ में एक प्यारा सा भजन।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब प्रस्तुत है पर्यावरण चेतना आधारित कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय है प्लास्टिक उत्पादन का पर्यावरण हितेशी विकल्प। वाचन स्वर है हुकुम चंद जैन का।
1: प्रिय श्रोतागण, प्राणी को इस पृथ्वी पर स्वच्छंद जीवन जीने के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है।

0: पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु हमें अनेक विकल्पों का उपयोग विचारना पड़ेगा। इस धरती पर प्लास्टिक पर्यावरण का परम शत्रु है। श्रोताओं, यदि मानव जाति अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक उत्पादन को काम में लेना छोड़ दे, बंद कर दे अथवा कम कर दे तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में विशेष सहयोगी साबित हो सकता है। वर्तमान समय में मनुष्य ने अपनी हर आवश्यकता का समाधान प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग द्वारा कर लिया है, जिसको नष्ट करना उसके हाथ में नहीं रहा है। प्लास्टिक न तो गलता है, न सड़ता है, न ही जलाया जा सकता है। प्लास्टिक के अनुपयोगी उत्पादों को मनुष्य या तो नालों में फेंकता है अथवा नदियों में बहा देता है, जो पानी का रास्ता अवरुद्ध करते हैं। मनुष्य जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं में ऐसे उत्पाद हैं पत्तल, दोने, पानी के गिलास, चाय के गिलास, प्लास्टिक थालियां, कटोरियां, थैलियां तथा पैकिंग में काम ली जाने वाली थैलियां आदि। इन सभी वस्तुओं के उपयोग के पश्चात मनुष्य इधर उधर सड़क पर नालियों, नालों या खालों में अथवा नदियों में फेंक देता है, जो पशुओं के खाने योग्य भी नहीं होते हैं, और इस गंदगी से पर्यावरण अशुद्ध होता जाता है। श्रोताओं, यद्यपि सरकारों द्वारा प्लास्टिक उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और उनके स्थान पर कागज, मिट्टी अथवा पत्तों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग बताया गया है, किंतु फिर भी मानव द्वारा इन प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बंद नहीं किया जाता है, जिससे पर्यावरण अस्वच्छ होने से स्वयं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होते जा रहे हैं और अनेक बीमारियों ने मनुष्यों को शिकार बना लिया है। घर घर में हर व्यक्ति बीमार होते जा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ के साथ साथ लंबी कतारें देखी जा सकती है। श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि इन प्लास्टिक उत्पादों का कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है और मनुष्य उपयोग में भी ले सकता है, किंतु आलस्य और प्रमादवश इन प्लास्टिक उत्पादों को छोड़ना नहीं चाहता है। इन विकल्पों में थैलियां अगर कागज की बनाकर काम में ले तो कागज तो अति शीघ्र नष्ट होने वाला उत्पाद है। देखा जाए तो प्लास्टिक उत्पादों से पूर्व कागज के उत्पाद ही काम में लिए जाते रहे हैं। हमने हमारे पूर्वजों को कागज या कपड़े के थैले, थैलियां आदि लेकर बाजार में आते जाते देखा है। सब्जी लेने भी जाते थे तो कपड़े का थैला लेकर जाते थे। घी, तेल, दूध लेने भी जाते थे तो टीन का डब्बा या बर्तन लेकर जाते थे, किंतु वर्तमान में तो आदमी हाथ हिलाता जाता है और बाजार से सामान के साथ अनेकों थैले या थैलियां जो प्लास्टिक से बनी होती है अपने साथ लेकर आता है, जिन्हें नष्ट करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी होता है। श्रोताओं, खाना खाने के उत्पादों में भी आदमी प्लास्टिक की पत्तल, दोने, कटोरियां, गिलास आदि को उपयोग में ले रहा है, जबकि पूर्वज पत्तों के द्वारा निर्मित पत्तल, दोने आदि का उपयोग करते थे। गिलास की जगह मिट्टी के सकोरों का उपयोग भी हमारे द्वारा देखा जाता रहा है। कई जगह पर तो पीतल, स्टील अथवा धातु के बर्तन काम में लिए जाते थे, जिन्हें आज भी नियमित रूप से काम में लिया जा सकता है, जो साफ किए जाने के बाद पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार पानी पीने में यदि मिट्टी के सकोरों को लाना ले जाना भारी लगता हो तो धातु के गिलास अथवा लोटे उपयोग में लिए जा सकते हैं। और देखा भी जाता है, कई पर्यावरण प्रेमी पानी पीने हेतु तांबे के लोटों के उपयोग पर अधिक जोर देते हैं। वास्तव में एक विवाह उत्सव या सामाजिक उत्सव में ट्रॉलियां भरकर वेस्ट प्लास्टिक उत्पाद नालों में फेंकते देखे जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा पर्यावरण को अस्वच्छ बनाते हैं। श्रोताओं, दुकानदार भी यदि प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर कागज, पत्ते, मिट्टी अथवा धातु द्वारा निर्मित उत्पादों के सामान बेचने लग जावे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बंद नहीं कर सके। उपभोक्ता भी यदि प्लास्टिक उत्पादों के बजाय कागज, मिट्टी, पत्तों या धातु के उत्पादों का उपयोग आरंभ कर दे तो प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग निश्चित ही बंद हो सकता है और हम जिस वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं वहां का पर्यावरण स्वच्छ बनाया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा, प्लास्टिक उत्पादन का पर्यावरण हितेशी विकल्प। आइए अब सुनते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

कार्यक्रम विवरण में हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाला सबसे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लगभग सुबह 7 बजे आप सुनेंगे नमस्कार कोटा। सुबह 7:15 बजे का समय होगा गांधी चर्चा का, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। वहीं सुबह 7:30 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत सुहाना सफर का। साथ ही सुबह के 8:15 बजे कार्यक्रम होगा लोक संगीत।

सुबह के 8:30 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, और 9:30 बजे का वक्त होगा महिला जगत का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा

सुबह के 8:30 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, और 9:30 बजे का वक्त होगा महिला जगत का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा छोटा घर बड़ी सोच। साथ ही आप सुन पाएंगे भेंटवार्ता डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी से, जिसका विषय होगा पारंपरिक औषधीय पादपों का महत्व। और इसी कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी गर्मियों में त्वचा की देखभाल की।

हमारी सायकालीन सभा में आप सुनेंगे शाम के 5 बजे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज का विषय होगा, आज का संवाद का विषय होगा यात्राएं भी सिखाती हैं। साथ ही आप सुन पाएंगे फिल्मी गॉसिप और विश्व पटल से अल्हम्ब्रा स्पेन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही नॉलेज कॉर्नर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के बारे में।

शाम के 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा कम लागत अधिक उत्पादन। साथ ही कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा, जिसका विषय रहेगा जैविक खेती को लाभकारी कैसे बनाएं। और स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर श्रवण कुमार यादव। साथ ही आपको जानकारी मिलेगी पीएम फसल योजना की।

शाम के 7:30 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत और रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। और रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम होगा एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने।

0: इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्या

हो गई है प्यारी सी सुबह और एक और खूबसूरत दिन का आगाज। और सुबह सुबह जब श्रोता नमस्कार कोटा से करते हैं दिन की शुरुआत, तो उनका दिन भी हो जाता है खास। तो हम ले आए हैं आपके लिए नमस्कार कोटा, और आज आपके साथ हूँ मैं जयती। सुबह सुबह की शुरुआत अगर हम करें कुछ अच्छे विचारों के साथ, तो दिन हो जाता है खास। तो आज का विचार क्या कहता है? आज का विचार कहता है, पढ़ने की आदत व्यक्ति को जानकारी का उपभोक्ता नहीं, समझ का निर्माता बनाती है। बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ाई करने के फायदे हैं, लेकिन असल

में पढ़ने का फायदा है या नहीं ये तो बड़े होकर ही पता चलता है। वो कैसे भला? अरे सामान खरीदना है तो उसका हिसाब कैसे करोगे, कीमतों की तुलना कैसे करोगे? अगर कहीं घर जमीन का सौदा किया तो कागजात नहीं पढ़ोगे क्या? वो सब भी छोड़ें, अगर मोबाइल पर किसी से बात करनी है तो नंबर कौन डायल करेगा? तो जब हम छोटी छोटी जानकारी को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कीमत, इस वस्तु की कीमत हम सही दे रहे हैं या नहीं। जब पढ़ेंगे और वस्तुओं की तुलना करेंगे तभी आप एक सही सौदा अपने लिए कर पाएंगे, चाहे आप व्यवसाय करते हों या खेती किसानी करते हों, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तो हैं। जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अपने अधिकारों के बारे में और समझते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना चाहिए। पढ़ने की आदत से आप सिर्फ सामने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी का ही उपभोग नहीं करते, बल्कि आप समझ पाते हैं कि आपको दी गई जानकारी सही है या नहीं। आप सोच पाते हैं कि प्रस्तुत जानकारी का उपयोग आप अपने हित में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ काटना है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करनी है, ये बात समझदारी से ही आती है। और आज के दौर में यही समझ हमें मिलती है पढ़ने से। तो चाहे आप अखबार पढ़ें या ऑनलाइन खबरें या लेख पढ़ें, पढ़ने की आदत अवश्य डालें।

क्योंकि पढ़ने की आदत आपको ले जाती है दूसरों से कहीं कहीं कहीं आगे, आप जानते ही नहीं, आप समझते भी हैं। तो बनाइए पढ़ने की आदत को अपना साथी।

आइए श्रोताओं, अब आप और हम करते हैं चर्चा। जी हाँ, आज की चर्चा का विषय है पर्वत से मुश्किल भी आसान हो जाती है जब हम ठान लेते हैं। अरे जब गर्मियां शुरू हुई थी तब हम सोच रहे थे यार ये गर्मियां कैसे निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे आधी गर्मियां कट गई। उसी तरीके से देखें, जब हम कोई लक्ष्य का निर्धारित करते हैं तो सोचते हाय अब ये कैसे होगा, ये पहाड़ सा सिलेबस कैसे पूरा होगा, या मेरी मनचाही नौकरी कैसे मिलेगी, या मेरा मनचाहा काम कैसे शुरू हो पाएगा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब धीरे धीरे हम पूरा लक्ष्य अपना निर्धारित करने के बाद लक्ष्य की फिक्र ना करते हुए एक एक कदम बढ़ाते हैं तो लक्ष्य दिन ब दिन खुद ही हमारे पास आने लगता है। इसे ऐसे समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे भूख लगी है और मुझे खानी है 3 रोटियां। क्या आप 3 रोटियां एक साथ खा लेंगे? नहीं, पहले एक खाएंगे, फिर दूसरी खाएंगे, फिर तीसरी खाएंगे। इसी तरीके से जब हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, या कहें छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे मंजिल हमारे करीब पहुंचने लगती है। अब सचिन तेंदुलकर एक ही दिन में थोड़े अच्छे बल्लेबाज बने होंगे, धीरे धीरे उन्होंने भी रोज कोशिश की होगी। धीरे धीरे जब हम रोज कोशिश करते हैं और मन में ठान लेते हैं तब पर्वत सी मुश्किल भी आसान हो जाती है। कहते हैं ना, जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, इस दुनिया में उस आदमी को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो।

जी हाँ, हर मैदान फतेह कर लेंगे हम, बस मन में ठानने की देरी है। और जब हम बात कर रहे हैं आज मन में ठान लेने की, तो हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कि हमारे देश के बहुत ही नामी व्यक्ति हैं और उनके काम को आज भी याद किया जाता है। कहते हैं भारत का हृदय उसके गांव में बसता है, और जब हम इस देश के गांव और किसानों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है। जी हाँ, वो है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह जी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की मिट्टी से। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, जो कि अब हापुड़ में है, के नूरपुर गांव से हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार से थे।

बचपन में उन्होंने किसानों के संघर्ष, खेतों की धूल और मौसम की मार को बेहद करीब से देखा। यह प्रारंभिक ग्रामीण परिवेश ही था जिसने उनके मन में जीवन भर के लिए किसानों और शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना भर दी। साधारण परिवेश से होने के बावजूद शिक्षा के प्रति उनका रुझान असाधारण था। उनका मानना था कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बजट और संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा खेती और गांव के विकास पर खर्च होना चाहिए।

वे एक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उनका कहना था कि बड़े कारखानों की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण युवाओं को वहीं रोजगार मिल सके और शहरों की तरफ पलायन रुके। भ्रष्टाचार और नौकरशाही का विरोध उन्होंने किया। वे प्रशासन में पारदर्शिता के कड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि जटिल कानून और अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब किसान को होता है।

जब मेरे देश की धरती उगलती है सोना, तो फिर उस सोने पे हक भी उनका ही होना चाहिए जो उगाते हैं। तो यही विचार थे चौधरी चरण सिंह जी के। वे कहते थे जमीन उसी की होनी चाहिए जो उसे जोतता है। वे बिचौलिए जमींदारों के सख्त खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति केवल भाषणों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ऐतिहासिक सुधार जो उन्होंने किए, वे आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952। यूपी में जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। तो आइए करते हैं हम उन्हें नमन।

श्री चरण चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तित्व को नमन करने के बाद अब वक्त है कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जो कोटा में तापमान बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आंधी, अभी संभावना है, मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी और अंधड़ हो सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में, तो संभल के रहिए और गर्मी बस जाने को ही है।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार कोटा यहीं पे समाप्त होता है। कार्यक्रम का संयोजन किया था तेजराम मीणा ने और प्रस्तुति सहयोग था राजेश महावर का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग। श्रोताओ, बापू की इस आत्मकथा से विभिन्न प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज का संदर्भ बोअर युद्ध। सन 1800

1891 से 1899 के बीच के अपने जीवन के दूसरे अनेक अनुभवों को छोड़कर अब मैं बोअर युद्ध पर आता हूँ। जब यह युद्ध हुआ तब मेरी अपनी सहानुभूति केवल बोरों की तरफ ही थी, पर मैं मानता था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध के मंथन चिंतन का सूक्ष्म निरीक्षण मैंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास में किया, इसलिए यहाँ नहीं करना चाहता। जिज्ञासुओं को मेरी सलाह है कि वे उस इतिहास को पढ़ जाएं। यहाँ तो इतना ही कहना काफी होगा कि ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार मांग रहा हूँ तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है। उस समय मेरी यह राय थी कि हिंदुस्तानियों की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है, अतएव जितने साथी मिले उतनों को लेकर और अनेक कठिनाइयां सहकर हमने घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाली एक टुकड़ी खड़ी की। अब तक साधारणतया यहाँ के अंग्रेजों की यही धारणा थी कि हिंदुस्तानी संकट के कामों में नहीं पड़ते, उन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। इसलिए कई अंग्रेज मित्रों ने मुझे निराश करने वाले उत्तर दिए थे। अकेले डॉक्टर बूथ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें घायल योद्धाओं की सार संभाल करना सिखाया। अपनी योग्यता के विषय में हमने डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त किए। मिस्टर लॉटन और स्वर्गीय एस्कम्बन ने भी हमारे इस कार्य को पसंद किया। अंत में लड़ाई के समय सेवा करने देने के लिए हमारी सरकार से विनती की। जवाब में सरकार ने हमें धन्यवाद दिया, पर यह सूचित किया कि इस समय हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमारी इस टुकड़ी में लगभग 1100 आदमी थे, उनमें करीब 40 मुखिया थे, दूसरे कोई 300 स्वतंत्र हिंदुस्तानी भी रंग रूटों में भर्ती हुए थे, बाकी के गिरमिटिये थे। डॉक्टर बूथ भी हमारे साथ थे। उस एक टुकड़ी ने अच्छा काम किया, यद्यपि उसे गोला बारूद की हद से बाहर ही काम करना होता था और रेड क्रॉस का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी संकट के समय गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने का अवसर भी हमें मिला। ऐसे संकट में न पड़ने का इकरार सरकार ने अपनी इच्छा से हमारे साथ किया था, पर स्पेयंकोप की हार के बाद हालत बदल गई। इसलिए जनरल बुलर ने यह संदेश भेजा कि यद्यपि आप लोग जोखिम उठाने के लिए वचनबद्ध नहीं है, तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायल सिपाहियों को और अफसरों को रण क्षेत्र से उठाकर डोलियों में डालकर ले जाने को तैयार हो जाएंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी। हम तो जोखिम उठाने को तैयार ही थे। अतएव स्पेयंकोप की लड़ाई के बाद हम गोला बारूद की सीमा के अंदर काम करने लगे। इन दिनों सबको कई बार दिन में 20-25 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी और एक बार तो घायलों को डोले में डालकर इतने मील चलना पड़ा था। जिन घायल योद्धाओं को हमें इस प्रकार उठाकर ले जाना पड़ा उनमें जनरल वुडगेट वगैरह भी थे। 6 हफ्तों के बाद हमारी टुकड़ी को विदा दी गई। स्पेयंकोप और ब्रालकोंज की हार के बाद लेडी स्मिथ आदि स्थानों को बोरों के घेरे में से बड़ी तेजी के साथ छुड़ाने का विचार ब्रिटिश सेनापति ने छोड़ दिया था और इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान से और अधिक सेना के आने की राह देखने तथा धीमी गति से काम करने का निश्चय किया था। हमारे छोटे से काम की उस समय तो बड़ी स्तुति हुई, इससे हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। आखिर हिंदुस्तानी साम्राज्य के वारिस तो है ही, इस आशय के गीत गाए गए। जनरल बुलर ने अपने तरीके में हमारी टुकड़ी के काम की तारीफ की। मुखियों को युद्ध के पदक भी मिले। इसमें हिंदुस्तानी कौम अधिक संगठित हो गई। मैं गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के बहुत अधिक संपर्क में आ सका। उनमें अधिक जागृति आई और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मद्रासी, गुजराती, सिंधी हिंदुस्तानी हैं, यह भावना अधिक दृढ़ हुई। सबने माना कि अब हिंदुस्तानियों के दुख दूर होने चाहिए। उस समय तो गोरों के व्यवहार में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। लड़ाई में गोरों के साथ जो संपर्क हुआ वह मधुर था। हमें हजारों टॉमियों के साथ रहने का मौका मिला। वे हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और यह जानकर कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं हमारा उपकार मानते थे। दुख के समय मनुष्य का स्वभाव किस तरह पिघलता है, इसका एक मधुर संस्मरण यहाँ दिए बिना मैं रह नहीं सकता। हम चीवली छावनी की तरफ जा रहे थे। यह वही क्षेत्र था जहां लॉर्ड रॉबर्ट के पुत्र लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स को प्राण घातक चोट लगी थी। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट के शव को ले जाने का

अम्मान हमारे टुकड़े को मिला था। अगले दिन धूप तेज थी, हम कूच कर रहे थे, सब प्यासे थे। पानी पीने के लिए रास्ते में एक छोटा झरना पड़ा। पहले पानी कौन पिए, मैंने ये सोचा। मैंने सोचा कि पहले टॉमी पानी पी ले, बाद में हम पियेंगे। पर टॉमियों ने हमें देखकर तुरंत हमसे पानी पी लेने का आग्रह शुरू किया और इस तरह बड़ी देर तक हमारे बीच पहले आप हम पीछे का मीठा झगड़ा चलता रहा। आज का अंक आपने सुना, बुअर युद्ध। अगले अंक में कुछ और कड़ी लेकर फिर उपस्थित होंगे।

12.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत सुहाना सफ़र।

श्रोताओं, स्वागत है आपका फिल्म संगीत सुहाना सफर में। और आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला गीत, आराधना फिल्म से, और गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है एस

आराधना फिल्म के इस गीत को जब भी हम याद करते हैं तो मुझे तो याद आ जाती है मुकुंदरा पहाड़ियों में जब सड़क के किनारे हम चलते हैं। और इस गीत को तो हमने सुना, अब आपको सुनवाते हैं आर पार फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

मजरूह सुल्तानपुरी और ओपी नैयर के गीत से सजा संगीत से सजाई गीत आप सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है गीत पत्थर के सनम फिल्म से।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुनों से सजा ये गीत, जिसके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत,

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आइए श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार विषय पर जानकारी। हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकेंगे। हमारे फ़ोन नंबर है 29411 42 और STD कोड है 0744। अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत शनिवार प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत सुहाना सफर, और अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम से, और गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत सुहाना सफर, और अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। गीत के बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने, और गीत को आवाज दी है गीता दत्त ने।

अभी आपने सुना आर पार फिल्म का गीत, आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिलाषा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार गीतों से सजा कार्यक्रम सुहाना सफर यहीं पे समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक

0: में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई

0: बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत का, और कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, नैना मोरा गए, और ये एक सहरिया गीत है।

श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम सुगम संगीत में। सुगम संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुनने जा रहे हैं जसपिंदर नरूला की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपकी सेहत की। कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 प्रातः 8:15 से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव उपचार विषय पर जानकारी। हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकेंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2941142 और STD कोड है 0744। अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत शनिवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12

0: राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के 3rd सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अभी तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
3: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। चांद मेहराब पे सोई हुई ये कायस है, बेवजू आंखें हैं, पड़ते हुए डर लगता है।

0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली प्रस्तुति आप सुनने जा रहे हैं फिल्म बैंड बाजा बारात से। गायक कलाकार हैं सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को निवेदन है, इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आइए श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार विषय पर जानकारी। हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर है 29411 42 और STD कोड है 0744। अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत शनिवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। आइए अब आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अनु मलिक और नेहा कक्कड़। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत से सजाया है संदीप शिरडोरकर ने।

फिल्म संगीत में अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं सिंह इज किंग फिल्म से, लव चंजुआ और सूजी क्यू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रावण फिल्म से एकॉन और हंसिका अय्यर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं विशाल ददलानी ने और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही हो।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब प्रस्तुत है हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों का उनके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं उन सभी सखियों का जो व्यस्त होते हुए भी अपने किचन में से भी सब्जी काटते हुए, उसे छौंकते हुए, रोटी का आटा लगाते हुए अपना महिला जगत कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं और रेडियो पर ट्यून किया हुआ है। हम उन सभी सखियों के भी शुक्रगुजार हैं जो ऑफिस जाने की जल्दी में हैं, जिन्होंने कार में भी अपना महिला जगत कार्यक्रम ट्यून किया हुआ है। हम उन सभी सखियों के भी शुक्रगुजार हैं जो मोबाइल सेट के जरिए भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी विभा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप मानती हैं ना कि सिर्फ चार दीवारों के मिलने से घर नहीं बनता, घर बनता है दिलों के मेल से, रिश्तों के ताने बाने से। एक घर अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए होता है, बचपन के सपने, टूटे हुए खिलौने, भाई बहनों की मस्ती, बुजुर्गों का अनुभव, माता पिता की जिम्मेदारी व कर्तव्य के किस्से, है ना? कहीं खो गई ना आप सब मेरी बातें सुनकर? आपका और हमारा दिल का रिश्ता जो है कि मैं कुछ कहती हूँ और आपके दिल तक पहुँचती है वो बात। सखियों, में से देखा जाए तो कोई घर छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। जब हम हमारा घर छोटा हो, हाँ हाँ होता है ना कहीं का घर छोटा, मतलब संसाधन सीमित हो, तब भी हमें हमारी सोच को असीमित रखना चाहिए। यह सोच न केवल हमारा जीवन बदल सकती है सखियों, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण को बदलकर अधिक शांति, स्वतंत्रता व व्यवस्थित जीवन शैली की ओर हमें ले जाती है। जब सीमित संसाधन हो सखियों, तो मन छोटा ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का घर बड़ा हो ये जरूरी तो नहीं। कई बार सब कुछ संभव भी नहीं होता ना, तो फिर ऐसे समय में

क्या करें? एक चीज है जो हम बड़ी कर सकते हैं, और वो है हमारी आशाएं, हमारा दृष्टिकोण। करेंगी ना बड़ा? सीमित संसाधनों में पला जीवन अक्सर उच्च विकास को प्राप्त करता है। सखियों, हमारा घर छोटा है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, इन सब विचारों से ऊपर उठकर सपने देखिए। सपने सफलता की ओर ले जाएंगे आपको। अपने नौनिहालों को सिखाएं सखियों कि सीमित संसाधनों का रोना छोड़ वो अपने संस्कारों को इतना उच्च बनाएं कि हर परिस्थिति का वो मुकाबला कर सकें। तो क्या हुआ, आपका घर छोटा है? तो क्या हुआ, आपका छोटा सा ड्राइंग रूम ही आपका स्टडी रूम बन जाता है और वही रात को सोने का काम आता है। अगर उसी छोटे से कमरे में बैठकर आपने ठीक से पढ़ाई की बच्चों, तो आप एक दिन अवश्य कामयाब होंगे, ऐसा आप अपने नौनिहालों को समझा सकती हैं। अपने दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाइए, कामयाबी का दायरा अपने आप बढ़ जाएगा। ये नहीं, वो नहीं, घर में शांति नहीं, इन सब शिकायतों से पीछा छुड़ाकर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि रुक जाना जीवन नहीं, हर मुश्किल का सामना करके चलते जाना यही तो जीवन है। और जीवन सपनों से होता है, सपने देखने से होता है, और उन सपनों को कोशिश करने की, कामयाब करने की जो कोशिश है, उससे जीवन चलता है।

0: अच्छा सखियों, हमने बातें तो कर ली, गीत संगीत भी सुन लिया, अब आप बताइए कि आपको छोटे से घर को सजाने में कितना मज़ा आता है? आता है ना मज़ा? और कुछ सखियों को तो बागवानी में भी बड़ा मज़ा आता है, वो पेड़ पौधों से ही अपने घर को सजाती रहती हैं। और अगर आपको बागवानी का शौक है तो हमारी जो आज की भेंटवार्ता है वो आप ही के लिए है। भेंटवार्ता का विषय है पारंपरिक औषधीय पादपों का महत्व, और हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी। तो आइए सुनते हैं ये उपयोगी जानकारी।
1: सखियों, आज हम बात करेंगे पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में और क्या है इनका महत्व जानेंगे। डॉक्टर शालिनी, स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पारंपरिक औषधीय पादप किन्हें कहा जाता है?
2: देखिए, पारंपरिक औषधीय पौधे वो पौधे हैं जो स्थानीय तौर पर हमारे आसपास प्रकृति ने हमें दिए थे और हमारे पूर्वज इनका महत्व अच्छे तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने इसके किसी न किसी रूप को, फूल, पत्ती, जड़ या तना, किसी न किसी रूप में हमारे भोजन में शामिल किया था या हमारे आहार में शामिल किया था। तो पारंपरिक औषधीय पौधे यही पौधे हैं जो हमारे आसपास सामान्य तौर पर हमें दिखाई देते हैं।
1: क्या पारंपरिक औषधीय पौधे क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, जलवायु के अनुसार पौधे होते हैं। और ये प्रकृति का ऐसा वरदान है जो हमें मिलता है, क्योंकि जिस इलाके में जिस तरीके की वनस्पति होती है, आप को ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें उस इलाके में होने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत मौजूद होती है। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में ऐसा कहते हैं कि इट इज अ साइंटिफिक रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल स्टिम्युलाई। मतलब जितने भी ये पौधे होते हैं उनमें आपके शरीर में जो बीमारियां जो उस एनवायरमेंट की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं उनसे लड़ने की ताकत इन पौधों में होती है।
1: सखियों, हमारे आसपास बहुत तरह के पौधे होते हैं जिनका नाम हम जानते भी हैं और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनका नाम हम जानते तक नहीं हैं। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका औषधीय महत्व है और जो हमें जानना ही चाहिए।
2: जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आपके आसपास उगते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ आसपास उगते हैं और कुछ को हम नहीं पहचानते हैं। तो देखिए, जैसे आपके घरों में आप सामान्य तौर पर तुलसी देखते हैं, अजवाइन देखते हैं, घर के आसपास गुड़हल लगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं आपको आंवला लगा हुआ दिखता है या फिर आंवले के फल आपको सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध होते हैं। इसी तरीके से धनिया, दाना मेथी, ये सब चीजें वो हैं जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं और इनके गहन औषधीय गुण हैं जो कि हमारे खाने में, हमारा जो परंपरागत भोजन था उसमें इस तरीके से निहित थे कि वो आपको अपने आप उनके सारे के सारे लाभ प्राप्त होते रहते थे।
1: सखियों, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद सिर्फ इस्तेमाल करना है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके औषधीय गुणों से हम अनभिज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि दैनिक जीवन में हम कौन कौन से पौधे रोज इस्तेमाल करते हैं और जिनका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है।
2: देखिये, जैसे तुलसी, हल्दी, आपकी मसालेदानी में जितने भी मसाले हैं उनमें से किसी भी मसाले का गुण किसी दूसरे से कम नहीं है। बहुत सारे गुणवर्धक पौधों के उत्पाद आप अपनी रसोई में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों की उपयोगिता के बारे में अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखें और उन्हें उनके अनुकूल उपयोग करें तो आप उसके स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से आपने एक और पूछा था कि कुछ पौधे जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें शायद आप पहचानते नहीं हैं लेकिन जिनके औषधीय गुण बहुत हैं। जैसे गिलोय, गिलोय आप में से बहुत लोग पहचानते होंगे, लेकिन गिलोय को अमृता कहा जाता है, मतलब अमृत तुल्य औषधि। और मेरा ऐसा मानना है कि हर घर में ये पौधे होने ही चाहिए। अगर मैं ऐसे पांच पौधे कहूं आपसे तो मेरा ख्याल है तुलसी, मीठा नीम, गिलोय, पुदीना और गुड़हल, ये मेरे हिसाब से हर घर में होने चाहिए क्योंकि इनकी औषधीय उपयोगिता बहुत अधिक है। इसी तरीके से हम में से बहुत लोग अड़ूसा करके एक पौधा होता है जो सामान्य तौर पर यूं ही जंगली अवस्था में पाया जाता है। इसी तरीके से निरगुंडी होता है, गंभारी होता है, गांगड़ी होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आज भी ट्राइबल एरियाज में, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उन पौधों को पहचानते नहीं हैं, उनके गुणों से अनभिज्ञ हैं, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते।

0: हैं। सखियों, आपको डॉक्टर साहब की बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे खान पान में जो जो शामिल किए थे कहीं ना कहीं उनका औषधीय महत्व है? क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कहा हल्दी, हम हल्दी रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद औषधि के रूप में सोचकर नहीं, सिर्फ एक मसाला समझकर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक औषधियों के बारे में, और आप जैसे कि कह रही हैं कि हमारे पूर्वज इनका इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप हमारी सखियों को जानकारी देंगी कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हम रोज इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं?
1: जी हाँ, हमें हर रोज किसी न किसी रूप में आंवला या नींबू का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये विटामिन सी का बहुत अच्छा भंडार है, और विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने में इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आसपास जो पॉल्यूशन है, आप उनको नहीं रोक सकते हैं, आप सारे पॉल्यूशन को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इन खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से एक त्रिफला होता है जो बाजार में हमें पाउडर मिलता है, जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है, उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से तिल है, सहजन है, इनके उत्पादों का इस्तेमाल आप हर रोज करिए। अदरक का इस्तेमाल आप रोज करिए, अदरक एक इम्यूनिटी बूस्टर है जिसका नियमित इस्तेमाल आपके हृदय को, आपको बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ताकत दे सकता है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे पूर्वज तो इन सब का इस्तेमाल करते ही रहे हैं, और जैसे कि हम कहते हैं ऋतु के अनुसार भोजन करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है।
1: हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि आहार ही औषधि है। आप देखिए, हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा परंपरागत खान पान था, वो जोर ही इसी बात पर देता था कि आप बीमार ही ना पड़े, संभव है।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने एक तरह से ये बात कही कि हमारा खान पान ही हमारी बीमारियों की वजह बन रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पारंपरिक औषधीय पादपों पर क्या हम इतना यकीन कर सकते हैं कि खांसी बुखार जैसी छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी घातक रोग तक ये पौधे हमारी मदद कर सकते हैं?
1: जी हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर बीमारी का इलाज मैं किसी पत्ती या किसी फूल में बता सकती हूँ, लेकिन यकीनन अगर आप शारीरिक श्रम और परंपरागत खाने को अपनाएं तो काफी हद तक हम इन सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कैंसर, कैंसर एक दिन में नहीं होता है, कैंसर आपके वर्षों के जो आपका सिस्टम अंदर, जो इंटरनल सिस्टम है, उसकी वर्षों की डिग्रेडेशन का नतीजा होता है, वो एक दिन में नहीं होता है। तो आप अपने अंदर इस तरीके की इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं जिससे आप इन बाह्य कारकों से लड़ सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि दो ऐसे परंपरागत हमारे औषधीय पौधे हैं जिनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज बहुतायत से किया करते थे। पहला है सदाबहार, जो सामान्य रूप से हर घर में पाया जाता है और हम सिर्फ उसे एक सजावटी फूल समझते हैं, लेकिन जो गुलाबी रंग का सदाबहार का पौधा होता है, कैथेरेंथस रोजस उसे हम कहते हैं, उसकी कैंसर में उपयोगिता शोध के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है। इसी तरह से एक और पौधा जो आपके बिल्कुल आसपास हर जगह मिलता है वो है शीशम। शीशम के पौधे की पत्तियों का कैंसर में उपयोग शोध द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे पूर्वज इन फूल पत्तों का इस्तेमाल नियमित रूप से किया करते थे, इसलिए वो इस तरीके की बीमारियों से लड़ने की एक इम्यूनिटी अपने अंदर रखते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर में अगर होंगी तो ठीक हो सकती हैं इन औषधीय पौधों के द्वारा, और अगर नहीं है तो वो आने वाले समय में ना हो, उसके लिए आपको इससे पूरी तरह से जो इम्यूनिटी है वो मिल सकती है।
0: डॉक्टर साहिबा, ये जो पारंपरिक औषधीय पादप जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हाड़ौती क्षेत्र की हम बात करें, या जो हमारी सखियां आज हमारा कार्यक्रम सुनना चाहती हैं, अगर वो ये चाहती हैं कि उनके घर में भी वो कुछ औषधीय पादप उगा लें जिनसे कि उनका परिवार सेहतमंद रहे, तो किन पौधों पर आप जोर देंगी और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो रोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं?
1: देखिए, इस तरीके के सारे पौधों में सबसे पहले तुलसी, जो सामान्य रूप से हर घर में उगती है, मीठा नीम जो आप अक्सर अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से गुड़हल, मैं कहूंगी कि एक ऐसा मुख्य औषधीय पौधा है जो आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि गुड़हल के फूल एंटी डायबिटिक होते हैं, गुड़हल के फूल आपकी स्किन केयर, आपकी जो हेयर्स हैं उनके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी के अलावा एक जो मुख्य औषधीय पौधा है जो हर घर में होना चाहिए, तो वो है गिलॉय। गिलॉय

0: हम में से हर एक के घर में होना चाहिए, क्योंकि गिलॉय ना केवल इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत अधिक हैं। और हम छोटी मोटी, जैसा कि अभी आपने एक पहले प्रश्न में पूछा था कि क्या सर्दी जुखाम जैसी छोटी बीमारियों के लिए, जी हाँ, आप सर्दी जुखाम और बुखार के लिए इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं।
1: सखियों, आज हम बात कर रहे हैं पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में। बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहिबा ने हमें दी, जिनसे आप सबने जाना कि कितने महत्वपूर्ण हैं ये पौधे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जानकारी जन जन तक पहुंचाने और खासतौर से माओं से और माओं से उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
0: जी, सबसे पहले हमें अपना जो सुविधा भोगी रवैया है वो बदलना होगा और 2 मिनट नूडल की संस्कृति को बदलना होगा। और हमें अपने जो परंपरागत खान पान के तौर तरीके थे, जो परंपरागत खाना बनाने के बर्तन थे, उन सब पर वापस लौटना होगा, ताकि हम अगर माओ को ये बता सके तो धीरे धीरे उनके बच्चे इस को आत्मसात कर पाएंगे।
1: सखियों, आप और हम सुन रहे थे पारंपरिक औषधीय पादपों के बारे में जानकारी। बहुत सारे पादप आपने सुने, आपने जाना कि आपकी रसोई में सारे गुण मौजूद हैं जो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं और बीमारियों को आपसे और आपके परिवार से दूर रखते हैं। ये जानकारी आप रखें और अपने बच्चों को भी जानकारी देते हुए भोजन कराएं, ताकि वो ये जाने कि जो भोजन आप उन्हें दे रही हैं वो उनके शरीर को मजबूत करने के लिए दे रही हैं और आगे रोगों से लड़ने की क्षमता दे रही हैं आप उन्हें, तो वो उतने ही मन लगाकर उस खाने को खाएंगे जिन्हें वो नाक मुंह सिकोड़ कर खाते हैं या जंक फूड की तरफ जहां उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहिबा, पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, मौसम ही ऐसा है जिसमें हमें अपना खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जब बात हो हमारी त्वचा की तो भाई दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि हर किसी की त्वचा अलग अलग तरह की होती है। पर कुछ उपयोगी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं जो आमतौर पर हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभप्रद रहेगी। जैसे कि कम से कम 3 लीटर पानी हमें पीना ही चाहिए इस भीषण गर्मी में। घर से जब भी हम बाहर निकलें तो खाली पेट कभी ना निकलें, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे और सही भी है। जहाँ तक हो सके तपती दोपहरी में निकलने से बचें सखियों, फिर आवश्यक कार्य हो तो बाहर जाना ही पड़ता है, और जब भी फिर आप बाहर जाएं तो सूती कपड़े से चेहरे व हाथों को ढककर निकलें, पूरी बांह के कपड़े पहने, और हाँ, एक आवश्यक चीज बोतल, जी हाँ, पानी की बोतल, उसे अवश्य अपने साथ रखें। गर्मी के मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल करनी है सखियों, तो चेहरे के अतिरिक्त तेल व रैशेस से बचने के लिए मुल्तानी मिट्टी, जिसकी खासियत होती है कि वो बहुत ठंडक प्रदान करती है, एलोवेरा जेल है, खीरे का रस है, इसका उपयोग करते रहें, जो आपको बिल्कुल तरोताजा रखेंगे। अपने खान पान में तरबूज है, खरबूजा, नींबू पानी, नारियल पानी, दही व छाछ को शामिल करें सखियों, ताकि शरीर व त्वचा में पानी की मात्रा का संतुलन बना रहे। हमारी कुछ सखियां गर्मी से बचने के लिए और ठंडक प्राप्त करने के लिए पूल का आनंद लेने भी पहुंच जाती हैं, पर उसी जगह से उन्हें त्वचा संबंधी परेशानी प्रारंभ हो जाती है। जब भी पूल से बाहर निकलें प्यारी सखियों, तो तुरंत साफ ताजे पानी से स्नान करें। गर्मी के मौसम में घमौरी की समस्या भी हो जाती है, जो पसीने की ग्रंथियां बंद हो जाने के कारण ऐसा होता है। त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं जिनसे पसीना बाहर नहीं निकल पाता और चुभन महसूस होती है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ठंडे

चीजों का इस्तेमाल करें। सब्जियां भी ऐसी बनाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। और हाँ, सूती कपड़े इस मौसम में हमें पहनने चाहिए। मोटे कपड़े या फिर सिल्की, इन कपड़ों को हम ना ही पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर से पसीना निकलता है और वो अवशोषित होता रहता है उन सूती कपड़ों से। बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। शुरुआत में हमने बात की थी छोटा घर बड़ी सोच से संबंधित, तो भूलिए मत सखियों, सीमित जगह का भी बुद्धिमानी से उपयोग किया जा सकता है।

की थी छोटा घर बड़ी सोच से संबंधित, तो भूलिए मत सखियों, सीमित जगह का भी बुद्धिमानी से उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में फर्नीचर का उपयोग करें जो एक से ज्यादा काम आए, जैसे सोफा कम बेड, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल। हाँ हाँ, सीमित जगह सीमित संसाधनों के होने पर भी प्यार, अपनेपन व शांति से सराबोर आपका घर आनंद दे सकता है। वहीं सब कुछ होने पर भी अगर सुकून नहीं है सखियों, तो सब कुछ होना बेकार हो जाएगा। इसीलिए नजरिया बदलने की आवश्यकता है, यह बात ध्यान रखें। नजरिया बदलेगा तो छोटा घर के प्रति आपकी नजर भी बदल जाएगी। और जब नजरिया बदलेगा तो आप यही गुनगुनाएंगे।

0: जी हाँ, इसी तरह से गुनगुनाएंगी और खुश रहेंगी हमारी प्यारी सखियां। महिला जगत कार्यक्रम में कल 30 मई शनिवार को चर्चा रहेगी, कला और साहित्य से स्वयं को अभिव्यक्त करती हुई महिलाएं। भेंटवार्ता आपके लिए लेकर आए हैं, बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं माताएं, और जानकारी देंगी श्रीमती मनप्रीत कौर। आपको जानकारी भी मिलेगी कि घर में फर्स्ट एड बॉक्स का महत्व क्या है। तो कल का कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा सखियों, और आज इस महिला जगत कार्यक्रम से अपनी सखी विभा को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है। भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?

0: ये पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं तो इसमें गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
1: काम कहाँ करते हैं?
0: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
1: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ।

0: कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है, यहाँ मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, और झीले भी अच्छी है।
1: जी आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
0: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
1: जी।
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को, अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।

0: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
1: जी क्या बात है, तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
0: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
0: और पत्र भी भेजे अभी भी भारतीय के स्टूडियो में, धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
1: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है?
0: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
0: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
0: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस से वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर क्या है। ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
0: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छाया गीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छाया गीत।
0: छाया गीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। हाँ। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ढल गया

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी, मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी।
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार?
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी, जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी।
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: और शुक्रिया विविध भारती से सुन सुनकर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं, सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी
0: जी, तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोल है आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।
2: आज

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के मन का सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: नील गगन की

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
1: ये तो गरीबों के बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना

0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हमें सुने गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कभी तो

0: फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवत अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2466-2867-0288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो

ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए प्रोग्राम रंग तरंग।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगे।

ओ धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा, ओ सनम ओ

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

सोनू निगम को आप सुन रहे थे जान एल्बम से, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। रंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत।
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत

0: बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है, गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल

0: युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार

0: आपकी लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालुबार में भी दिखाएंगे।
1: जी,
0: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
2: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
2: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालुबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालुबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के

0: दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नू, ना छोड़नू।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आपको चौपाल कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दी जाए।

श्रोताओं, शुक्रवार दिनांक 29 मई 2026 यानी कि आज 7:30 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा, जिसका विषय है जैविक खेती के लाभ और जैविक खेती कैसे करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर श्रवण कुमार लाल, कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-29-411-42। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुनिए 0744-29-411-42। प्रसारण का समय शुक्रवार साय 7 बजे से 7:30 बजे तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं इनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
4: जिंदगी

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
1: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाहों, दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
0: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें जिंदगी में हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो उनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना। मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए, तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की तो दिल्ली का लाल किला मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथी लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज पालिका बाजार घूमे हैं और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा, और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप

वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहां पर, जहां पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूँ तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है, और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिग्गी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाजार, आज़ाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी जरूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियां मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजार

कारों की बात चली है तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेम्पल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है, जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है, शायद अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है, कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है, हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की गली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शमी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरम पंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: छात्रों की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का

0: आविष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और न ची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
0: 1905 के अंतिम चार महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वाग्बाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत

0: 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत

अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवर्जन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सके।

0: करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगरों बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराक के काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं?
1: हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: तो घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी

0: जमीन शक्ति दी है, बीच में ही ऐसे अंधे तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है, आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है ना
1: मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं?
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो बोरमाइश।
0: इसके अलावा

0: अबा, आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा मुझे बताइए, त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े।
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी देर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है।
0: अच्छा।
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना, ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीत की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी।
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी, पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे। और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
0: जी,
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी।
0: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से
0: जी,
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी।
0: हर्षिता आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240022 4662 02228 670 288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती।

थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

है, लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती। जमीन तो रहती ही है, पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा? हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है, और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था? शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाज

आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया, तुम लोग जमीन बांटने में

लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था। कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और यहाँ भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोतों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: इस हल्की ठंडी हवा में ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के साथ हम फिर से हाजिर हैं, लेकर कुछ सुकून के पल, कुछ प्यारी बातें और ढेर सारी मुस्कुराहटें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी। मैं हूं आपका दोस्त रजत
1: और मैं हूं आपकी अपनी चेष्टा। दोस्तों, दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहा हो, हर शाम अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। एक मौका, ऐसा मौका जहां हम थोड़ी देर रुककर खुद से बात कर सकते हैं, अपने मन को सुन सकते हैं और आने वाले कल के लिए फिर से मुस्कुरा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और युवाणी भी कुछ ऐसा ही एहसास है दोस्तों, जहां बातें सिर्फ शब्दों से नहीं दिलों से होती है, जहां हर आवाज में अपनापन है और हर पल में एक नई प्रेरणा।
1: और अगर आज आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो या फिर आप बस थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ढूंढ रहे हो, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बिताइए, क्योंकि कभी कभी एक प्यारी सी बातचीत और कुछ सच्चे शब्द मन को फिर से बहुत हल्का कर देते हैं।
0: दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर नया दिन हमें फिर से शुरुआत करने का मौका देती है। इसीलिए सपने देखना कभी मत छोड़िए और खुद पर हमेशा भरोसा रखिए।
1: तो चलिए इस खूबसूरत शाम को थोड़ा और खास बनाते हैं सॉन्ग्स, मुस्कुराहट और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी रजत
1: और चेष्टा के साथ,
0: जहां हर शाम बन जाती है दिल से जुड़ी हुई एक प्यारी मुलाकात।
1: तो चलिए दोस्तों, आप करते हैं कार्यक्रम का श्री गणेश इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं रजत मेहरा। दोस्तों, जिंदगी के सफर में हम किन रास्तों पर चलते हैं, इससे हमारी मंजिल तय होती है, और रास्तों की चॉइस तो हमारे हाथ में होती है।
0: बिल्कुल सही कहा रजत, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है चलते जाना, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, और इसलिए हमें भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना चाहिए।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा, और जिंदगी के इसी सफर में हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं ना।
0: हाँ बिल्कुल सीखते हैं। तो सो सफर जिंदगी का हो या दुनिया का, हमें बहुत कुछ सिखा देता है।
1: चेष्टा वो कहते भी है ना कि सिर्फ किताबें ही नहीं, रास्ते भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी किसी स्टेशन की भीड़ तो कभी किसी पहाड़ की खामोशी, हर सफर ना अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि

0: जो देखकर इंसान सीखता है वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है, जो
1: हाँ
0: करके सीखता है वो ज्यादा अच्छे से सीखता है
1: बिल्कुल।
0: किताबें पढ़ने से ज्यादा या सुनने कहीं का। और मजेदार बात पता है क्या है रजत, कि कई बार हम घूमने निकलते हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन लौटते वक्त खुद को थोड़ा और समझ कर आते हैं।
1: हाँ, ऐसा मेरा भी एक किस्सा है।
0: बताओ
1: एक बार
0: फिर।
1: मैं ना ट्रेन में सफर कर रहा था। पूरा प्लान था मेरा कि मतलब रास्ते भर गाने सुनूंगा और आराम से जाऊंगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन सामने बैठे हुए अंकल ने जैसे ही पूछा ना कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बस फिर क्या, अगले 3 घंटे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मेरे को सुना दी।
0: अच्छा, और तुम्हारा फ्री पॉडकास्ट हो गया है ना।
1: हाँ मतलब, लेकिन सच बताऊँ ना तो उन्हीं अंकल ने एक बात भी कही थी।
0: क्या कहा?
1: उन्होंने कहा था कि सफर में मंजिल से ज्यादा जरूरी होते हैं वो लोग जो
0: जो
1: हमें रास्ते
0: रास्ते
1: में
0: में
1: मिलते
0: मिलते हैं। बिल्कुल,
1: हैं।
0: ये मैंने भी सुना है और कई बार किताबों में पढ़ा है कि मंजिल से भी उसका जो सफर होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और ये तो बिल्कुल छू लेने वाली बात है, क्योंकि यात्राएं हमें सिर्फ जगहों से नहीं मिलवाती, वो हमें इंसानों से, संस्कृतियों से और कभी-कभी खुद की कमियों और खूबियों से भी मिलवाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही। दोस्तों, कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तब छोटी छोटी चीजों की वैल्यू भी समझ आती है, जैसे घर का खाना।
0: बिल्कुल, अगर हम कहीं से आते हैं ना
1: हाँ
0: तो फिर तो मम्मी के हाथ का दाल चावल भी किसी 5 स्टार से कम नहीं लगता।
1: हाँ वही। और यात्राएं ना हमें पेशेंस भी सिखाती है,
0: बिल्कुल।
1: कभी ट्रैफिक में फंस कर सिखाती है, या फिर कभी गलत रास्ता पकड़ कर, तो कभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने का इंतजार करके।
0: हाँ बिल्कुल, और कई बार सबसे यादगार कहानियां भी इन्हीं अनप्लान्ड मोमेंट से बनती है। और मुझे याद है कि एक बार मैं रास्ता भूल गई थी जब
1: अच्छा।
0: कहीं घूमने गई थी तो, और फिर क्या हुआ, पहले तो मेरे को ना बहुत टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा, लेकिन उसी दौरान एक चाय की दुकान मिली, वहां पर बैठे लोगों से बात हुई, उनकी सिंप्लिसिटी देखकर मुझे देखने को मिला और सीखने को भी मिला कि हमेशा बड़ी चीजें जरूरी नहीं होती कि उनसे आप खुश हो। अगर जैसे कि आपके पास आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ आप खुश हो, तो वो चीजें भी आपको बहुत खुश कर सकती है।
1: बिल्कुल
0: जरूरी
1: सही।
0: नहीं है कि आपके पास बहुत ही बड़ी बड़ी
1: कोई
0: चीजें
1: बड़ा
0: हो।
1: रीजन हो उस खुश होने के
0: हाँ,
1: लिए।
0: उस खुश होने के लिए।
1: और यात्राएं हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी परेशानियां उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी हमें लगती है।
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए कहीं दूर निकल जाना चाहिए।
1: और एक बात मैंने भी सुनी है, एक
0: क्या?
1: मशहूर शायर, पोएट, लेखक हैं जावेद अख्तर, आपने सुना ही होगा उनके बारे में।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बिल्कुल।
1: उन्होंने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें किसी इंसान के बारे में जानना हो ना, तो 3 चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए।
0: अच्छा, क्या है वो 3 चीजें?
1: पहली चीज है तो या तो तुम उनके साथ 14 साल बिताओ,
0: अच्छा, हाँ
1: या फिर 14 घंटे का सफर
0: सफर
1: तय
0: तय
1: करो।
0: करो। हाँ
1: हाँ,
0: हाँ
1: या फिर इसके अलावा तुम उसको गुस्से में देख लो।
0: अच्छा।
1: तो इन 3 चीजों से तुम्हें उस आदमी के बारे में कि वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, इसका पता लग जाता है। तो सफर का बहुत बड़ा महत्व है।
0: अच्छा, और अगली बार दोस्तों जब भी कहीं जाएं तो सिर्फ फोटोज के लिए मत जाइए, थोड़ा महसूस भी कीजिए लोगों को, रास्तों को और उस जगह की कहानियों को।
1: क्योंकि दोस्तों, सफर ना सिर्फ किलोमीटर तय करने का नाम नहीं होता, ये दिल और सोच के दायरे बढ़ाने का नाम है।
0: बहुत सही कहा तुमने।
1: क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि यही सफर आपको जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सबक भी दे जाए।
0: बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लाइक
1: हाँ,
0: कुछ भी,
1: हम कुछ भी सीख सकते हैं सफर से।
0: लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल।
1: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हम आपको लेकर चलेंगे अल्हम्ब्रा की सैर पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हम चलेंगे यूरोप के खूबसूरत देश स्पेन की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जिसे देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि ये महल नहीं पत्थरों में लिखी हुई एक कविता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेन शहर के ग्रेनाडा में स्थित विश्व प्रसिद्ध अल्हम्ब्रा की।
1: अल्हम्ब्रा शब्द अरबी भाषा के शब्द अल कलअत अल्हम्ब्रा से बना है, जिसका अर्थ है लाल घर या लाल किला। दोस्तों कहा जाता है कि इसकी दीवारें ना सूर्यास्त के समय लाल रंग की चमक देने लगती है,
0: और यही खूबसूरती से बाकी महलों से अलग बनाती है। और ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक पूरा रॉयल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें किले, बगीचे, आंगन और जो फुहारे होते हैं वो, शाही महल, ये सभी इसमें शामिल है।
1: अरे वाह। और दोस्तों अल्हम्ब्रा का निर्माण ना मुख्य रूप से तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में नासरीत वंश के मुस्लिम शासकों द्वारा करवाया गया था, और उस समय ग्रेनाडा स्पेन में मुस्लिम शासन का आखिरी बड़ा केंद्र था।
0: और दोस्तों यहाँ की वास्तुकला इस्लामी कला और स्पेनिश संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाती है। दीवारों पर बनी अरबी लिखावट, ज्यामितीय डिजाइन और खूबसूरत नक्काशी, हर चीज बड़ी बारीकी से बनाई गई है, ये दर्शाती है।
1: और चिश्ता एक मजेदार फैक्ट भी है।
0: क्या?
1: कि अल्हम्ब्रा की कई दीवारों पर ना अरबी में एक वाक्य बार बार लिखा हुआ है।
0: क्या लिखा हुआ है?
1: ला गालिब इल्लल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह के सिवा कोई विजेता नहीं।
0: वाह। और दोस्तों अल्हम्ब्रा का सबसे मशहूर हिस्सा है कोर्ट ऑफ द लायंस, यानी शेरों का आंगन।
1: दोस्तों यहाँ ना बीच में एक सुंदर सा फवारा है जो 12 संगमरमर के शेरों पर टिका हुआ है, और इतने सालों बाद भी इसकी सुंदरता और मजबूती लोगों को हैरान कर देती है।
0: और इसके साथ ये भी सुनिए कि उस समय यहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि पूरे महल में छोटे छोटे पाइप के जरिए पानी बहता था, मतलब उस दौर में भी वाटर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा एडवांस थी।
1: और अल्हम्ब्रा के पास स्थित एक जनरल लाइफ गार्डन भी है जो की बहुत प्रसिद्ध है, और ये गार्डन्स ना शाही बगीचे कभी राजाओं के आराम और सुकून की जगह हुआ करते थे।
0: और इमेजिन कीजिए ठंडी हवा, पानी की हल्की आवाज, फूलों की खुशबू और सामने पहाड़ों का नजारा, सच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सपना देख रहे हो, है ना?
1: सपनों में जो सीनरीज आती है ना वैसा लग रहा है।
0: हाँ।
1: और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के कलाकार, लेखक और फोटोग्राफर्स इस जगह से हमेशा इंस्पायर्ड रहे हैं।
0: बिल्कुल। और 1984 में अल्हम्ब्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित भी किया था।
1: और दोस्तों आज ना ये स्पेन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ऐतिहासिक जगहों में से एक है।
0: और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि अल्हम्ब्रा को देखने वाले विजिटर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कई बार तो टिकट्स पहले से बुक करनी पड़ती है।
1: फिर तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें पहले से बुक करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: सच में इतिहास की खूबसूरती ना लोगों को हमेशा अपनी ओर खींच लेती है।
0: हाँ। और अल्हम्ब्रा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कला, संस्कृति और इतिहास सीमाओं में नहीं बहते, वो समय के पार जाकर भी लोगों को जोड़ते हैं।
1: हाँ, मतलब 13वीं-14वीं शताब्दी में जो बनाया था उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो आज भी हम लोगों को इतना आकर्षित करता है, तो ये सच में समय के पार है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों अगर आपको इतिहास, आर्किटेक्चर या फिर ट्रैवलिंग पसंद है ना, तो अल्हम्ब्रा आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकती है,
0: क्योंकि कुछ जगह सिर्फ तस्वीरों में अच्छी नहीं लगती, वो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। और ऐसी ही ये जगह है अल्हम्ब्रा।
1: और दोस्तों ऐसी ही फैंटास्टिक एक गाने की ओर भी हम आपको ले चलते हैं, जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आपके दो रेडियो दोस्त चेष्टा गौतम
1: और रजत मेहरा के साथ।
0: दोस्तों नॉलेज कॉर्नर में आज हम ऐसे विशेष दिवस के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में शांति और मानवता की रक्षा करने वाला बहादुर लोगों को समर्पित है।
1: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है।
0: इस दिन उन शांति सैनिकों को सम्मान दिया जाता है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर शांति बनाए रखने का काम करते हैं।
1: इन सैनिकों को अंग्रेजी में UN
0: पीस कीपर्स भी कहा जाता है ना?
1: UN पीस कीपर्स। ये सैनिक संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करते हैं
0: और इनका मुख्य उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा करना और शांति स्थापित करना होता है।
1: अब कई श्रोताओं का ये सवाल भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या है।
0: बिल्कुल, तो इसका आंसर ये है कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना और देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है।
1: और दोस्तों आज दुनिया के लगभग सभी देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं। जब किसी देश में संकट की स्थिति पैदा होती है ना, तब संयुक्त राष्ट्र वहाँ शांति सैनिक भेजता है।
0: और भारत भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: भारत ने अब तक हजारों सैनिकों विभिन्न देशों में भेजे हैं। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवता के लिए पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं।
0: भारत की महिला शांति सैनिकों के लिए भी दुनिया में कहीं मिसाल जो है वो कायम की है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये भी सिखाता है कि शांति और मानवता सबसे बड़ी ताकत है
1: और उन सैनिकों के बलिदान को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: और साथ ही ये प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति को बनाए रखना चाहिए हमें।
1: और ये दिवस युवाओं को संदेश देता है कि आज के युवा देश और दुनिया का भविष्य है।
0: बिल्कुल, और दुनिया का भविष्य होने के साथ युवा शांति, सहयोग और मानवता के मूल्यों को अपनाए तो दुनिया और बेहतर बन सकती है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि शांति केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: तो दोस्तों ये था हमारे नॉलेज कॉर्नर का पहला टॉपिक। अभी बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको गीत, फिर बताएंगे आपको नॉलेज कॉर्नर के दूसरे टॉपिक के बारे में।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

दोस्तों, जैसे कि संगीत से पहले हमने आपको कहा था कि हमने नॉलेज कॉर्नर के पहले टॉपिक पर बात कर ली है, और संगीत के बाद हम बात करेंगे नॉलेज कॉर्नर के सेकंड टॉपिक पर, जो कि है चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि।

0: चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था।
1: चौधरी चरण सिंह जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, किसान, नेता, लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे।
0: इन्होंने जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था
1: और बचपन से ही इन्होंने किसानों की कठिनाइयों को बहुत ही करीब से देखा था और यही कारण था कि आगे चलकर इन्होंने किसानों के लिए, अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।
0: दोस्तों, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू की, लेकिन देश और समाज की सेवा इन्हें राजनीति की ओर ले गई।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी केवल नेता ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
0: देश की आजादी के बाद भी इन्होंने जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम किया था।
1: चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा भी कहा जाता था
0: और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति जो 1957 में आई और भारत की गरीबी और उसका समाधान जो 1964 में प्रकाशित हुई, और 9 फरवरी 2024 में मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था।
1: ये, और दोस्तों, ये जो दिन है ये हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो जनता के दुख दर्द को समझे और उनके लिए काम करे।
0: आइए चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: सितारों की जब बात होती है ना तो हमारे मन में हमेशा गुदगुदी सी हो जाती है,
1: और इसीलिए तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्मी गॉसिप का पिटारा।
0: अरे वाह दोस्तों, आज यानी 29 मई को तो ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जो आपको अपने बचपन की याद दिला देंगी। वो है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो और रिटर्न ऑफ द जंगल। दोनों फिल्में खासकर बच्चों के लिए बनाई गई हैं।
1: द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो फिल्म में एक साइंस फिक्शन एंटरटेनर है जिसे देखकर आपको अपने बचपन की जो मजेदार फिल्म्स है ना, जैसे कि भूत अंकल, चेन खुली की मेन खुली, ये सब की जो फिल्म है ना ये याद आ जाएगी आपको।
0: और द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो में जैकी श्रॉफ मेन लीड कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: जिनकी फिल्में हमने भूत अंकल ये सब देखी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और रिटर्न ऑफ द जंगल एक फन एडवेंचर फिल्म है जो कि भारत की अपनी एनिमेटेड मूवी है।
1: अच्छा, बहुत सही बात है ये तो कि अपनी इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नया आया है। और वहीं बात करें पिछले हफ्ते की तो लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल दर्शकों को बहुत पसंद आई है, और लक्ष्य और अनन्या पांडे के अभिनय की भी खूब प्रशंसा हो रही है। ये क्यों चला?
0: उर्दू शायरी की दुनिया के एक बेहद खूबसूरत और संवेदनशील स्वर आज खामोश हो गया। डॉक्टर बशीर भद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एहसासों को शब्द देने वाली एक पूरी दुनिया थे। उनकी शायरी ने मोहब्बत, दर्द, उम्मीद और इंसानियत को इतनी सादगी और गहराई से भरा बयां किया था कि हर दिल उनसे जुड़ गया। उनके अल्फाज आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में रोशनी की तरह जिंदा रहेंगे। उन उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये शेर आज और भी गहराई से दिल को छू जाता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अलविदा बशीर पत्र साहब, आपकी शायरी हमेशा हमारे दिलों को जिंदा रहेगी।

0: दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सिनेमा ना होता ना, तो हम कुछ कम रंग देख पाते, कुछ कम एहसास महसूस कर पाते और कुछ मनोरंजन भी कम होता।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा रजत तुमने। सिनेमा ने हमारी जिंदगी में कुछ रंग, एहसास और मनोरंजन तो जरूर ऐड किया है।
0: हाँ, और बात फिल्मों की हो या फिर फिल्मी

0: मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं।
1: 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का एरोड डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है।
0: मई 2026 में गुजरात राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए जल परब अभियान शुरू किया है।
1: भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग 11 उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है।
0: मई 2026 में परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 न्यूयॉर्क यूएसए में संपन्न हुआ है।

0: दक्षिण कोरिया ने मई 2026 में आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2030 के दशक के अंत तक अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण और तैनाती करना है।
1: मई 2026 में भारत ने ब्रिक्स पर्यटक कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करके आधिकारिक तौर पर अपने पर्यटक सहयोग एजेंडा

0: की शुरुआत की है, जिसकी थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है।
1: मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पी. जवाहर कार्यभार संभाला है।

0: कार्यभार संभाला है।
1: दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, मतलब जाने का मन तो हमारा कर नहीं रहा, और कब आपके साथ बातें करते करते 6 बज गई हमें पता भी नहीं चला।
0: हाँ, मतलब आज हमने कितनी बातें करी, फिल्मों की और
1: जानकारियाँ और अल्हम्ब्रा के बारे में, कितनी हाँ सारी चीजों के बारे में आज जो कार्यक्रम है बात हुई है उसमें।
0: सफर हमें क्या क्या सिखाता है इसके बारे में भी हमने जाना।
1: बिल्कुल,
0: और इसी में हम सफर पे निकल गए अल्हम्ब्रा की ओर।
1: बिल्कुल, हाँ।
0: यहाँ पे हमने अब मेरा भी मन करता है कि अब अल्हम्ब्रा हमें भी घूमने जाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते करते हमें पता नहीं चला कि वक्त कितना गुजर गया और 6 बजने को आए। तो हमें दीजिए इजाजत, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आपके दो रेडियो दोस्त रजत
1: और चेष्टा के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये

0: अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
3: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:05 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, पहला गीत आप सभी के रेडियो सेट पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म भ्रष्टाचार। मधुर आवाजें हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत और श्रोताओं आप बने हुए अपनी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के सफर का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म कसूर से, मधुर आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

वाकई में संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात को कह देता है, और जब बात फिल्म संगीत की हो तो हर धड़कन खुद ब खुद गुनगुनाने लगती है। जी हाँ श्रोताओं, गीत केवल शब्द ही नहीं होते हैं बल्कि वो यादों का कारवां होते हैं। कुछ चेहरे मुस्कुरा देते हैं तो कुछ पल फिर से जवां होते हैं। ऐसे ही उन पलों को ताजा करने के लिए हम लेकर के आए हैं अगला गीत फिल्म खट्टा मीठा। श्रोताओं, मधुर आवाजें हैं केके और सुनिधि चौहान की।

फिल्म संगीत का ये सफर है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत आप सभी के रेडियो सेट पर, जी हाँ यानी कि FM 102 पर। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म खूबसूरत से, मधुर आवाजें कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की। श्रोताओं इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

वाकई में श्रोताओ, संगीत एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। हर गीत एक कहानी कहता है और हर धुन किसी न किसी याद से जुड़ ही जाती है। श्रोताओ, इन्हीं बेहतरीन गीतों के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
1: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
0: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
1: फिर भी लल्लू के बाबू, खाना खाने से पहले हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
0: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे और लल्लू के बापू, मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: देखिए सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
7: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 6:30 अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्र

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों जीवन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। एनआईए की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से

0: पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदड़ में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रिक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ में कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी

0: पर्यावरण के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावण संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावण का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावण राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावण प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूरदराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग फंड से एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण जल की सफाई देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत मिशन तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माय सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छत माथे सूरज री रोशनी उ बिजली बनावण री मशीना लगाई ची। प्रदेश में सत्यापन नहीं करा सके।

0: या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन में सत्यापन करायो चावेला और राज्य रा कुछ हल्का माय आंधी बारिश हूं लू और तपन हूं थोड़ो आराम मिलियो आज और काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताईचियो समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राख्योड़ा फैसला 3 महीना री मियाद माय सुनावन रा हुकम दीना है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादी जुड़िया मामला माय तुरंत फैसला री जरूरत माथे जोर दीनो पीठ कहो कि जमानत री अर्जिया माथे हुकम वाई दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया जावना चाहिए अदालत कहो के जमानत या सजा निलंबन रो हुकम सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है पीठ कहो के विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलताई वाई दिन या आवता दिन जेल नु छोड़ दियो जावनो चाहिए सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला माय दायर अर्जिया माथे आज ही सुनवाई कीनी न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो ई मामला माय चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए आ अर्जिया माय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओजू बनावन या वन हटावन रो हुकम देवन और वाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावन री मांग करी ची ही ई मामला माय अगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह माय करी जावेला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेज माय दाखिला सारू ओजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीका बिना गलती करावन रो भरोसा दिलायो है दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसा दिलायो के सरकार विचे इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगला जतन करया जा रहा है
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है जो रक्षक था वही भक्षक हुआ जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश में हाल ताई 40 लाख मकाना रे छत माथे सूरज री रोशनी उ बिजली बनावन रे मशीन लगाती रीची है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी वे कहो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करियो जावनु है इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करिया जा सकेला चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करी जिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला जरूरत पड़िया 18 जून ने सवारे 9 सिंजा 4 बजे ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजे वोटां री गिनती करी जावेला मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माए कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्या लोगां रो हाल ताई सत्यापन नी करायो जा सक्यो है मारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना वे कहो के राज्य माए करीब 89 लाख लोगां ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जहां मायू 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है

0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA रेटिमा आज अजमेर नीमराना हलका माए कुछ थोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम माए वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत माए कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भुनियाणा पंचायत समिति माए पीपल पूजन करी जियो और महिलावां मंगल गीता सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलका रा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर और पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनु है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन रे शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ई बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवन सागे बीका माए कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। इसके बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वहां वीडियो ने गलत बतायो है जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रा मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने AI बनाई चियो है। PIB री फैक्ट चेक इकाई रा मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माए संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा विधायका और आला

अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माय हिंदी ने असरदार तरीकाओं काम लेवन रबारा माय चर्चा करी जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा माथे

0: दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावण रो लक्ष्य नीचला लेवल माथे हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय कानियों सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल माथे जनता ने मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका में लोगों की जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति ते करण बाबत कह्यो। वह कह्यो कि गांवां में हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण में साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट देश की सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरा री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगाई जी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो जावेला। अर राज्य रा कुछ हलका माय आंधी बारिश लू अर तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज अर काल घनखट होना आंधी बारिश अर ओला पड़बा सारू चेताईचियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102 और साथ 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम चौपाल का। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुन बड़ा सभी किसान भाई बहना कता श्याम भाई कैट घनी घनी राम राम। किसान भाई बहना गर्मी को टर्म से अबारो के टर्म न लू भी बढ़िया चाल रही चा। हाँ तो यही टर्म की यदि आपन गर्मी में खड़ना चा तो आपन ताए पूरो पूरो बचाव कर ही खड़ने से कोशिश करो का धन के टर्म की तो बाहर घर से खड़ा कोई ना। फिर भी मजबूरी चे कहीं जानो चे जरूरी चे तो पूरा ढांग डपड़ पूरा कपड़ा फर खड़ा मुंडा पर स्यापी बांधा गमछो बांधा और माथा पर भी काय न काय बंदे होनी चाहे जो सीधो तावड़ो आपने न लाग। फिर भी तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पिया आपन करे को आँच बना लिया चाहे वो पिया नींबू सिकन जी पिया जतनु ज्यादा आपन पतलो यानी पानी लिक्विड पिएगा उतनु ही ज्यादा आपन शरीर में फायदो करोगे। तो इस वजह से तो आपन गर्मी से बच सका चा। गर्म ORS को पैकेट हमेशा रखाना सब जगह स्वास्थ्य केंद्र आपन ताए मुफ्त में मिल जाओ छ। और न भी हो तो तुरंत नमक शक्कर को घोल बनायो और आपन उगताए पीना यदि आपने पानी की कमी महसूस हो रही तो। कोई भी उल्टी दस्त की शिकायत होगी तो तुरंत अस्पताल पहुंचा तो गर्मी से आपन बचाव करा। एक साथ साथ ही आपन जो खेती च उमें भी आपन कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया तो वो वैज्ञानिक तरीका भी अपना हुआ। और आप कताए बता दूँ जो किसान का मसीहा जो कहलाया था आपना भारत का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी आजमा की पुण्यतिथि भी च जो आपना देश का पाँचवा प्रधानमंत्री रिया था। तो यहाँ ना कहीं चक भाई जन्मदिन तो यहाँ को जो जन्म हुए जो 23 दिसंबर 1902 में और यहाँ को जो जन्मदिन जो राष्ट्रीय किसान दिवस का रूप में मनाया जाए क्योंकि किसाना का हित में यहाँ ना बहुत बढ़िया काम करा चा। टर्म की हरित क्रांति भी आई किसाना का हित में ज्यादा से ज्यादा काम करे तो यहाँ को जो संघर्ष त्याग च जन कल्याण के प्रति यहाँ की जो भावना च वह सदाएं आपने सबके लेकर प्रेरणादायक। और बात करीजिए आपन भाई कम लागत में आपन

0: ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कशा लिया, तो इनका बारे में भी अपन बातचीत करेंगा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
0: तो किसान भाई बनाओ सजीव फोनी चौपाल से, और आज को जो आपने विशेष उच्च जैविक खेती का लाभ और जैविक खेती कशा करा। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे आपने जो रसायन से खेती करता रहा चाह, तो आपने देख रहे चाह का दनादन आपने खेती जो छ जमीन से ऊपर भी असर हो रो छ, साथ में जो खाबाड़ा जो आपने जीव चा मनक चा आपने जानवर छ कोई भी पशु पक्षी छ वहाँ के ऊपर भी वो रसायन को असर हो रो छ। तो लोग जागरूक तो हो रहा है, लेकिन यदि जैविक खेती आपन करा चाह तो को काई फायदो छ और कशा आपन करा, इनकी जानकारी देवा के लेकर आज आपने चौपाल में फावना छ डॉक्टर श्रवण कुमार यादव साहब, सहायक आचार्य ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। तो डॉक्टर साहब, आपको चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम साहब।
0: हाँ डॉक्टर साहब, आपने देख रहे हैं कि भाई रासायनिक खेती आपने किसान भाई बन करी रहा है, दनादन रसायन को उपयोग बढ़तो जा रहा है। यहाँ साल हम संभावना दिख रही है अपने ताई जो बाहर की वैश्विक स्थितियाँ चाहे वो अनुसार आपने प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई जो आपने डीजल से पेट्रोल से एक आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग करा, ज्यादा उपयोग आप न करा उसे, क्योंकि आप जो रसायन से कच्चो माल जो भी बाहर से मंगवाना चाह तो उनकी स्थिति के अनुसार भी उपलब्धता की स्थिति कायम हो सके टर्म की, तो कम ज्यादा हो सके। अब और आए थोड़ा दिन पहले के भाई जो आपने जो रसायन खाद छ वो जमाबंदी जो नकल छ जमीन की जमाबंदी छ अनुसार ही वितरण करो जाओगे, तो अच्छा की स्थिति आपने सामने पैदा हो रही है। तो इन सब बचवा के लेकर कहीं अपन जैविक की ओर बढ़ सका था, उन सब बराबर लाभ ले सका था।
2: किसान भाइयों, जैसा कि श्यामू भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि हर घर की थाली हो बिना जहर वाली। हमने पिछले इन 50 सालों में अंधाधुंध रसायनों का उपयोग किया है, जिससे हमारी धरती माता आज कुपोषण हो गई है। आज बारी है इस धरती माता को वापिस जीवित और सुपोषण देने की। किसान भाइयों, बिना केमिकल के, बिना रसायन की खेती हम आसानी से कर सकते हैं, और वो है हमारी गो आधारित जैविक खेती। इसको हर किसान भाई आसानी से कर सकता है। इसमें कई सारी खादें होती है, यदि उनमें से किसान भाई 5-6 खादों का नाम याद करके, उसकी विधि याद करके बना ले, तो उसको बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये खादें कौन कौन सी है? पहली वो खाद जिसको हम जमीन में डालते हैं, जैसे केंचुआ खाद हो गई, कंपोस्ट हो गया, गोबर की सड़ी हुई खाद हो गई, सरल कंपोस्ट हो गई
0: जी।
2: ये तो जमीन में डालने वाली खादें हैं। और तीन प्रकार की खादें ऐसी है जिसका हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं
0: जी।
2: जिसमें पहली है पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाली, जैसे जीवामृत, वर्मीवास, पंचगव्या, खाद की चाय, ऐसी कई सारी खादें हैं। और दूसरी है जो पौधों पर छिड़काव करेंगे वो कीट नियंत्रण करने वाली, जैसे तस्पर्णी, अग्नियस्तर, नीमास्तर, ब्रह्मास्तर, इनका उपयोग करके आप फसलों में जो कीट लगते हैं उनको नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरी है जो रोग मारने वाली, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, जैसे फफूंदनाशी हो गई, इसको, इन सभी जो मैंने नाम लिए हैं, इनको किसान भाई घर पर बनाकर अपने खेतों में यूज करके बिना रसायन के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: तो ये जो किसान भाई आपने यहाँ चीजें बनाओ डॉक्टर साहब, तो उनके लेकर जो कच्चो माल है, जैसे भाई कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज बनाऊंगा तो कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, वो कहीं रहेगा आप?
2: किसान भाइयों, ये जो जितने भी मैंने नाम बताए हैं इनको बनाने के लिए अपनी जो गौ माता है उससे जो

0: और गौमूत्र मिलता है वो है, और जो अन्य आदान है वो भी हमारे खेत पे मिल जाते हैं। जैसे कीट नियंत्रण करना है तो जो अपना आंकड़ा है, दथूरा है, नीम है, सीताफल है, पपीता है, नीम गिलोय है, तुलसी है, गेंदा है, बबूल है, करंज है, महुआ है, बील है, इन जिन पौधों का मैंने नाम लिया है इन पत्तों को सड़ाकर वो अच्छे से बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। जैसे पहला हो गया दस पर्णी।
1: तो ये तो जो आपने बताया डॉक्टर साहब आसानी से आपने खेत पर मेड़ पर आसानी से उपलब्ध सारी चीजें।
0: बिल्कुल श्याम भाई जी।
1: तो फिर तो आपने जो आपने किसान भाई बन रसायन में खाद में 10,000-20,000 की दवाएं वहां लिखा रहा हो फिर बाद में पैसा दे लिखा हुआ हो या नगद लाओ तो उनसे तो आसान काम छ।
0: श्याम भाई जी बहुत अच्छा ये आधार हम किसान भाई खेत पर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा दस पर्णी,
1: जी
0: 10 पेड़ों की पत्तों से बनता है जो मैंने अभी नाम लिए। तो एक ड्रम लेना है उसमें 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र मिला दो
1: जी।
0: और उसके अंदर उन 10 पेड़ों की पत्तियों को 2-2 किलो लेकर अच्छे से कूट कर डाल दो। इसके साथ साथ आधा किलो अदरक, आधा किलो हरी मिर्च, आधा किलो तंबाकू और आधा किलो लहसुन को पीस कर उनको भी डाल दो और इन सब चीजों को मिलाकर ड्रम को पूरा पानी का भर दो और 40 दिन के लिए रख दो। 40 दिन बाद में जो काटा बनेगा उसका नाम है दस पर्णी, और 1 लीटर को 10 लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल में जो भी कीड़े लगते हैं वो सभी के सभी मर जाएंगे।
1: मतलब लागे हुए कीड़ा भी खत्म हो जाएगा भाई, लाग बाकी संभावना के पली तो हुआ तो सही सही लाग रहा है वो भी खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल भाई साहब,
1: बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई। तो किसान भाई बनाओ जो आपने जैविक खेती छ उनका कहीं लाभ चल रही लाभकारी कशा करा और जैविक खेती कशा करा इनका बारे में आपके मन में भी कोई प्रश्न छ तो आज आपने चौपाल में डॉक्टर शरण कुमार यादव साहब छ तो सीधी आप यहाँ से फोन पर बातचीत कर सको छो। यहाँ से बात करवा कर लेकर आकाशवाणी का वही आपका जाना पहचाना फोन नंबर 0744 एसटीडी कोड और 294-1142 फोन नंबर। दूसरा फोन नंबर पर भी आप बात कर सको जो 0744 वो एसटीडी कोड और 233-444 यहाँ पर भी आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको जो। कोई भी आपके मन में प्रश्न है जैविक खेती के लिए, जैविक खेती कहाँ से करा, कशा शुरुआत करा, माए कहीं करनी पड़ोगो, किसे मिलनी पड़ोगो, कहीं प्रशिक्षण छाओ छो, तो ये तमाम तरह का जितना भी सवाल छ वहाँ सबको उत्तर देवा कर लिख आज आपने चौपाल में फावना छ डॉक्टर शरण कुमार यादव साहब। तो यहाँ से आप जैविक खेती के बारे में कोई भी बात कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सको छो। तो देर खाएं बात की उठाओ फोन और जैविक खेती का लाभ शुरुआत जो भी छ वो आप डॉक्टर साहब से सीधे पूछ सको छो। तो डॉक्टर साहब जैसे आप बात करें भाई जैविक खेती छ, जैविक खेती किसान कर लागत भी उनकी घटगी सारो सब कुछ और फायदो ही फायदो छ। आपने की भाई गो आधारित अब आपने किसान भाई गाय भी पाला छ तो भैंस भी पाला छ, कुछ किसान बकरियां भी पाला छ, तो कहीं यहाँ का गोमूत्र यहाँ का मूत्र से या यहाँ का गोबर से भी आपने एक काम ले सका छ?
0: बिल्कुल सभी पशुओं का आप गोबर और गौमूत्र यूज ले सकते हैं, लेकिन जो गाय अपनी देसी गाय माता है उसके गोबर और गौमूत्र में जो असंख्य जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो उन दूसरे जो हमारे पशु है से ज्यादा होती है
1: जी।
0: तो यदि देसी गाय है तो बहुत बढ़िया है, देसी गाय नहीं है तो आप उन जो दूसरे जानवर है उनकी जो क्वांटिटी है गोबर और गौमूत्र को बढ़ा दो।
1: अच्छा,
0: तो उस प्रकार से सभी जानवर से कर सकते हैं।
1: मतलब कोई जरूरी कोई ना भाई गाय हो आपने यदि भैंस तो उनको काम में लेकर सका, बकरी तो उनको भी अपन काम पर वो थोड़ी सी जो संख्या वो आपसे पूछ कर या कोई भी जो जानकार थे उनसे जानकारी लेकर अपन कर सका था खेती। बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात आपने बताई। तो डॉक्टर साहब जो आपने जैविक खेती इनका लाभ कहीं कहीं मतलब किसान आते हैं?
0: किसान भाइयों हमने जो अंधाधुंध रसायन डाले हैं उससे आज हमारी धरती माता में जो सूक्ष्म जीव थे जो केंचुए थे जो धरती माता के जो हलवाई कहा जाता है जो धरती में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलते हैं और असंख्य छिद्रों का निर्माण करते हैं जिसे अपनी मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे पहले जमीन में सूक्ष्म छिद्र होते थे जिससे पूरा वर्षा का पानी जमीन में समा जाता था। आज उनको हमने सबने मार दिया है तो हमारी धरती माता बिल्कुल कठोर जो पत्थर है वैसे हो गई है। पहले जब बारिश होती थी तो आधा घंटा यदि बारिश होता तो पानी जमीन में जाता था और आज 5 मिनट बारिश होती है पूरा पानी बहकर दूसरे खेत में जाता है। ये हमारी धरती माता पर इन रसायनों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा जो हम इन अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करके हम खेती में जो उत्पादन ले रहे हैं उनमें उन सूक्ष्म जीवों के जो रसायन है वो रसायनों के जो अवशेष है वो उन अनाज के अंदर है, उनको खाने से आज कैंसर जैसी महामारी जो आज पंजाब हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जिनमें हर तीसरे आदमी को कैंसर है तो ये कैंसर वाली समस्या आ गई। इसके अलावा जो लागत है खेती की वो लागत बढ़ गई, हम बाजार

0: से सब चीजें ला रहे हैं, ट्राइको जिस ट्राइकोडर्मा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब बाहर से लेके आ रहे हैं। लेकिन यदि किसान थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके अपने घर पर ये दस पर्णी निमास्त्र ब्रह्मास्त्र ऐसे कीटनाशक और जो ग्रोथ प्रमोटर है वर्मी वास पंच के भी बनाए तो कि अपनी खेती की लागत को कम कर सकता है। और सबसे जो मेन लाभ है वो है अच्छा गुणवत्ता का भोजन, जो बिना रसायनों के अवशेष हम खाएंगे तो हमारी मानसिकता सही होगी और हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य में बढ़े रहेगा। आज आप देख रहे थे डॉक्टर साहब, जो कैंसर जैसे आपने बताया तो कैंसर च अटिस, बीपी ब्लड प्रेशर च अटिस, आपने शुगर की समस्या च, तो ये नया नया जो नव युवक छे ना वहाँ कभी देखभाल में मल्टी छे।
0: बिल्कुल भाई साहब,
1: तो इनको कारण भी लगभग भाई जो खान पान चो उनको ही समस्या छे।
0: बिल्कुल श्याम भाई जी, आज कैंसर के हॉस्पिटल में जाके हम सर्वे करें कि कैंसर जो 100 के मरीज से मिले उनमें हम पूछे कि कैंसर बीड़ी सिगरेट पीते हो क्या, तो उनमें से 40% ऐसे हैं, 40% जिनको कैंसर बीड़ी सिगरेट से हुआ है, लेकिन 60% कैंसर के वो मरीज है जो ये अंधाधुंध रसायनों वाला अनाज खा रहा है। बाजार से किसान भाई सब्जी लाते हैं, सबसे ज्यादा जहरीली सब्जी होती है, अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं और हम चाव से लेके आते हैं कि आज हमारे घर वालों को सब्जी खिलाएंगे, और हम बाजार से सब्जी नहीं, हम बाजार से जहर लेके आ रहे हैं और वो जहर खाने से कैंसर जैसी समस्या।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ताजा हरी सब्जियां ला रहे जा, रंगदार सब्जियां खा रहे आप और सब्जियां के साथ साथ जहर भी आपने खा रहे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही बढ़िया बात आपने बताया है डॉक्टर साहब। तो आपने जो किसान भाई बन चे लागत भी कम कर सके खेती की और खुद को और दूसरा को स्वास्थ्य भी सुधार सके, तो ये तो आपने ताई लाभ मिल सके। लेकिन कोई भी किसान भाई बन यदि आपन से जुड़ बोचा हुआ और किसान भाई बनो जहां तक जुड़बाई की बात है, तो आज आपने चौपाल में पावना चाहे डॉक्टर सरण कुमार यादव साहब यहाँ से बातचीत करवा कर लेकर जैविक खेती का बारे में पूछताछ कर लेकर आप सीधे यहाँ से बात कर सको। जो वही आपका जाना पहचाना फोन नंबर 0744 एसटीडी कोड और 294-11-42 से, दूसरा फोन नंबर 2-333-444, दो ही फोन नंबर आप सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको। जो जैविक खेती का बारे में जो भी आपका मन में प्रश्न है वो आप पूछ सको।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो किसान भाई बहनों चौपाल में फिर आपको स्वागत है, डॉक्टर साहब को भी स्वागत है और आज का आपने चौपाल का पावना से डॉक्टर श्रवण कुमार यादव साहब सहायक आचार्य कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा न्यास जैविक खेती के बारे में जो भी आप नए पूछने से किसान भाई बनाओ तो सीधी बातचीत कर सको जो 07-44-2941142 फोन नंबर, दूसरा फोन नंबर 2-333-444 तो यहाँ पर आप सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको जो। और जैसे फोन की बात करी तो एक फोन भी आ रहे हो किसान भाई बनाओ यहाँ से बात कर लेना। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ कहाँ से कौन बोल रहा है साहब?
3: देवराज।
2: अच्छा देवराज जी, काय पूछ बचाओ छो डॉक्टर साहब से?
3: मुझे पूछना चाहूँ थोड़ी सी भिंडी है
2: जी।
3: वो भिंडी मानते हैं कि वो रोग लग रही है सफेद सफेद और वो मतलब जाओ बैंगन चारा में वो भी सफेद फूल थी और
2: अच्छा
3: कई।
2: बिल्कुल बिल्कुल देवराज।
4: किसान भाई साहब राम
3: राम।
4: आप जो अभी यदि आप सुन रहे थे तो मैंने एक दवाई का नाम बताया जिसका नाम 10 पर्णी है। इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था, उसको आप बनाकर उसका छिड़काव करें। बनाने का तरीका मैं एक बार वापस बता देता हूँ। 200 लीटर का ड्रम, उसमें 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र और 10 पेड़ जो अपने आसपास मिल जाएंगे जिनमें नीम है, दतूरा है, आंकड़ा है, अरंडी है, सीताफल है, पपीता है, कनेर है, तुलसी है, गेंदा है। इन पौधों की दो दो, कोई नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी दो दो किलो पत्तियां लेके उनको कूट कर ड्रम में डाल दो और उसके बाद में आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन, आधा किलो

0: हरी मिर्च और आधा किलो आपका हल्दी, इन सब, ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी क्या आइटम बता दिया, लेकिन इन सब चीजों को मिलाकर 200 लीटर ड्रम को पानी भर दो, ये आपके पूरी 6 महीने में जितनी फसलें हैं उन सब में काम आ जाएगा। 1 लीटर जो जूस बनेगा, 40 दिन रखना है इसको, और 1 लीटर जूस को 10 लीटर पानी मिला के छिड़काव करो, आपकी जो फसल में जो रोग और कीड़े लग रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे।
1: इससे कम मात्रा में नहीं किया जा सकता?
0: कैसे?
1: 200 लीटर के बजाय
0: तो आप 100 लीटर कर लो, इनकी क्वांटिटी आधा आधा कर दो।
2: जैसे मैं करेंगे तो आपने जो सामान बताया है वो आधा डाल देंगे अपन, उमें काम हो जाओगे। अब अबारो जतनो काम आ सके ले लो, बाकी सो अगली फसल तो सोयाबीन या धान करेंगे उमर ले लेंगे, पर अब अबारो डाल साहब समस्या ये होगी कि अभी तो 40 दिन बाद काम करेगा।
0: हाँ,
2: और अभी अब वर्तमान में रोग लाग रो तो अब का करा तो
0: अभी जो अपनी छाछ है ना, छाछ जो छाछ है उसको आप 5 दिन मटकी में डाल के उसमें एक तांबे का टुकड़ा डाल के और अपनी जो रेवड़ी है उसमें खड्डा खोल के उसमें दबा दो, और 5 दिन बाद में उसको निकाल के बिल्कुल सड़ जाएगी, खट्टी हो जाएगी, उसका आधा लीटर लेके 10 लीटर पानी मिला के छिड़काव कर दो,
2: तो वहां से वो रोग नियंत्रण कर सकता,
0: रोग और कीट नियंत्रण हो जाएंगे उसके। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल
2: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देवराज जी आपने फोन करे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब कहे कि तत्काल नियंत्रण करना चाहिए तो तत्काल का उपाय भी आपने पास?
0: बिल्कुल।
2: बाद में यदि वो कहे ना कि आपने यहाँ तो भाई पानी आवा से पहले पाल बांधने ना, तो फिर उनका बाद में तो अपना आनंद ही आनंद।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। तो भाई पानी आवा से पहले पाल बांधा, आपने सब्जियां कर रहा चाहे आपने जो भी खरीफ की फसल बुआई करेगा उम्र रोग बीमारी आवगी सही, तो ये चीजा तो हमेशा तैयार रखा सका।
0: बिल्कुल।
2: हाँ, एक बात पूछ बचाऊ डॉक्टर साहब, जैसे 40 दिन बाद की शुरुआत करेंगे तो उन्हें कितना दिन आता है अपन रखा सका?
0: उसको 2 महीने तक अपने स्टोर कर सकते हैं,
2: मतलब 40 दिन के बाद में 60 दिन और रखा सका।
0: इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप फसल की बुआई करें तभी उसको बना दे उसी दिन, हमें कीड़ा लगने का इंतजार नहीं करना है, हमें पहले से इसको बना के तैयार रखना है।
2: जी, एक किसान साथी को फोन यहाँ से भी बात कर लें। हेलो, हाँ, राम राम साहब, कहाँ से कौन बोल रहे हो? चौधरी साहब, का पूछ बचाओ जो डॉक्टर साहब से?
0: भाई साहब राम राम, बीजों को उपचारित करने का एक बिल्कुल जैविक और देसी इलाज है, उसका नाम है बीजा अमृत। अब इस बीजा अमृत को बनाने का तरीका आप लिख लीजिए जल्दी से। आपको 20 लीटर पानी लेना है एक बाल्टी के अंदर, और 5 किलो जो गाय का ताजा गोबर है उसको एक कपड़े में पोटली बांध के उस पानी में डुबो दो 12 घंटे के लिए। 12 घंटे बाद में उस पोटली को निचोड़ो बढ़िया तरीके से उसी बाल्टी में, फिर डुबो, फिर निचोड़ो, फिर डुबो, फिर निचोड़ो, ऐसे 7 बार निचोड़ो जो उसका पूरा रस निकल जाएगा। और इसमें 2.5 लीटर गौमूत्र मिला दो, जो पानी वो पानी निकलेगा छड़ा निथरा हुआ उसमें 2.5 लीटर गौमूत्र मिला दो और 50 ग्राम चूना मिला दो और उसको एक दिन के लिए रख दो। और फिर बाद के अंदर जब आप जो भी बीज की उपचार करना चाहते हो उसका पानी लेके बीज के ऊपर डालो और उसको हाथ से पूरा मिक्स कर दो और आधा घंटा उसको सुखा के और फिर आप फसल की बुआई कर सकते हो।
2: बीज बड़े गीलो हो जाओ और सुखो दो।
0: हाँ, और इस ये बहुत अच्छा जैविक खेती के अंदर बीज उपचार करने की एक बिल्कुल सस्ती और अच्छी दवा है।
2: तो डॉक्टर साहब जैसा भाई जैविक खेती के लिए यो बीज उपचार कर सकता था या जो अपन लगातार जो दूसरी खेती कर रहा था उनके लिए भी यो तरीको
0: कर सको? बिल्कुल, काई को फर्क पड़े
2: है ना भाई, चाहे जैविक जो कर रहा था उमें बुआई करा या जो अपन रसायन कर रहा था उमें बुआई करा, बीज उपचार को तरीको दो यहाँ एक ही हो।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताया था। तो ये तरीका से भी चौधरी साहब अपन बीज उपचार कर सका था, तो बिल्कुल बिना पैसा को काम से डॉक्टर साहब, ये तो
0: मेहनत का काम है थोड़ा सा, लेकिन उसमें पैसे आपका पूरा बच जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अब बीज उपचार कर लेके लोग बाग एक दो 2000 की दवाएं लिया होते और बीज में डाल देते, काम कर रही चाहे न कर रही उनको भी पता ना चला और सीधी डाली बुआई कर देते।
0: बिल्कुल,
2: तो थोड़ी मेहनत करा तो आपन बना पीसा के बना खर्चा के आपने खेती में सुधार कर सका था और फिर जहर मुक्त
0: और अपनी अपना स्वास्थ्य से और अपनी मातृभूमि का स्वास्थ्य से और पूरे देश का स्वास्थ्य
2: पूरे देश का स्वास्थ्य से। तो बहुत ही बड़े मतदार साहब आपने बताया छो। तो किसान भाई बना आपके मन में भी कोई जैविक खेती से संबंधित प्रश्न छ तो डॉक्टर श्रवण कुमार यादव साहब आपने चौपाल में वहां से आप सीधी बातचीत कर सको छो, बात करवा कर लेकर वही आकाशवाणी।

0: का फोन नंबर 0744, एसटीडी कोड 294-1142 फोन नंबर। और जैसे डॉक्टर साहब फोन की बात करी, एक किसान साथी को फोन भी आ गया अपना। हेलो, राम राम साहब।
1: हेलो।
0: हाँ राम राम साहब, कहाँ से कौन बोल रहा? जी कन्हैया लाल जी, कहा पूछ पोछा हो डॉक्टर साहब से?
1: अभी माँ का कहा है ग्वार जो ना जो 50% सूख गयो
0: अबारों की टाइम की
1: फूल आ रहे थे, बढ़िया बकरो आ रहे थे और उम्र से 50% सूख गयो ग्वार।
0: अच्छा, करेला जी साहब, राम राम।
1: राम राम।
0: ये जो सबसे पहला जो अपनी गलती कर देते हैं वो है बीज का उपचार। जो ये सूखने का जो है ना, इसको हम ये जड़ गलन कहते हैं। और इसका मैं बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखें, जब भी फसल की बुआई करें तब एक ट्राइकोडर्मा आता है जैविक फफूंदनाशी, उससे बीज का उपचार करें। और अभी अपनी फसल खड़ी है तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा है ना, उसको पानी में घोल के और जो गंवार के पौधे हैं उसके पास पास जड़ों के अंदर ड्रेंचिंग करें, मतलब पौधे के पास पास में डाले। हाँ, उसमें घोल बना के और उसको पौधे के पास में डाले, जिससे क्या, और पानी पिलाने के बाद में नमी, जमीन नमी होनी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, पानी पिलाने के बाद में दूसरे, आज पानी पिला दो तो कल डालो?
0: तो कल तो वो पैर घसेगा, दो दिन बाद में कर दो, थोड़ा टाइट हो जाएगा जमीन। हाँ जी, और वो उसका आपको पूरा जो डिटेल है अभी हम नंबर बताएंगे, उसमें आप कॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी कितना मिलाना है वो भी मिल जाएगी।
2: ठीक है ना? तो बारो आप सुनो और बाद में जब डॉक्टर साहब नंबर बताओ, जब नंबर लिख लीजियो। हाँ बिल्कुल सर, आपने फोन करे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो डॉक्टर साहब से आपने बात करे थे भाई, फायदा ही फायदा वो सो दो, जो नुकसान खा भी कोई ना।
0: बिल्कुल।
2: अब आपने जो किसान भाई बहन से वो जैविक खेती करवाए की सोच रहे हो, तो शुरू से काय तैयारी करे और वो क्या तैयारी करे अपना
0: किसान भाइयों? जैविक खेती करने से सबसे पहला जो काम है वो है जैविक खेती में खाद का निर्माण करना, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट है, बेड बना के उसके ऊपर केंचे छोड़ दो और 60 दिन तक पानी का छिड़काव करो, जिससे वो खाद बिल्कुल दानेदार चाय की पत्ती तरह बनेगी और उसका आप फसल की बुआई से पहले उपयोग कर लो।
2: या तैयारी तो आपने दो महीना फली करनी पड़ेगी,
0: पहली करनी पड़ेगी
2: जी।
0: और उसके बाद में बीज उपचार से, मैंने बताया बीजामर से बीज उपचार कर दो, और फिर बाद में जब भी कीड़ा लगे तो 10 पानी का छिड़काव कर दो, फसल की वृद्धि कम दिखाई दे तो आप वर्मीवास का छिड़काव कर दो, जिसको केंचे का पानी कहते हैं उसका छिड़काव कर दो, और इस प्रकार, और हर पानी के साथ जीव अमृत का उपयोग करो, जीवा अमृत। ये जीवों के लिए भी अमृत है और हमारी मर्दा के लिए भी अमृत है। तो इस प्रकार से हम जो 4-5 मिनट जो नाम बताए, वर्मी कंपोस्ट हो गया, बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, वर्मीवास हो गया, इन सब का उपयोग करेंगे, 10 पन्नी हो गया, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी।
2: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब श्याम, आपने ये बताया जब किसान समझा तो कोई ना भाई किसान बनावा, तो ये कर लेकर कहीं वो भाई ट्रेनिंग से कोई शिविर से या कहीं कहीं से आयोजित हो तो रहे थे?
0: इससे यदि अपनी हाड़ौती रीजन के जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, अपने हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है और कोटा के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आप आकर हम मेरे यहाँ से और हमारे जो स्टाफ है उनके यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैविक एवं प्राकृतिक खेती का काम मैं देख रहा हूँ, इसमें यहाँ आकर किसान भाई जो भी चीज जितने भी आदान मैंने बताए उनका बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल के साथ आप सीख सकते हैं यहाँ पे आके।
2: तो सका भी सका था लेकिन मेहनत तो देखो खुद नहीं करनी,
0: किसान को खुद को करनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब आपने बताया। चर किसान भाई जो आपकी बात न सुनर जरूर लाभ लेगो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम सर। राम राम
2: सर। तो किसान भाई बनाओ जो डॉक्टर साहब ने बात बताई छे, यहाँ बात को लाभ अपन तभी ले सका जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे। और इनके साथ साथ ही डॉक्टर साहब ने जो बतायो छे कि भाई अपन प्रशिक्षण भी ले सका चा, सीख खा सका चा, तो वहां अपन सीख सका चा। और डॉक्टर साहब ने एक फोन नंबर की खींची अंत में, तो वो फोन नंबर भी वो आपका ताई बताऊँ किसान भाई बनो। तो यह बातों को आपने ध्यान रखाना। और एक साथ साथ ही आपने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनको भी आपन पूरो लाभ लिया, बीमो करवाऊंगा तो लाभ लेगा। जो डॉक्टर साहब ने फोन नंबर की खींची तो वो फोन नंबर से 7976997775, यानी 7976997775, यहाँ पर फोन करके और आप जो भी जैविक खेती चाहिए आप वर्तमान

0: સ્થિતિ છે ઊંઘ બારામાં જાણકારી લઈ શકો છો.
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा. किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें. इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित जैसे उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है. साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें. ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है. ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है. साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें. ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें.
0: तो किसान भाई बनाप चौपाल को टर्म भी पूरा हो रहा है. तो आपका साथी श्यामू भाई कहता है विद्यो अनुमति चलना चाह राम राम.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। तो इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

धरती धोरा री रंग रंगीली राजस्थान री, जहाँ की हवाओं में संगीत बसता है, जहाँ हर कदम पर संस्कृति मुस्कुराती है और जहाँ लोकगीत सिर्फ गाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित रहेगा राजस्थान की उस लोक संस्कृति को जो सदियों से हमारी पहचान रही है। मांगड़ियारी री मिठास, कालबेलियारी धड़कन, घूमरी अदाएं और मांडगीतों की आत्मा, आज सब कुछ जीवंत होगा लोकगीतों के इस कार्यक्रम में।

वाकई में राजस्थान का लोक संगीत केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी परंपरा, इतिहास और भावनाओं की अमूल्य धरोहर है। यहाँ के गीतों में वीरता भी है तो प्रेम भी है, त्याग भी है तो मिट्टी की सौंधी खुशबू भी है। आइए सुनते हैं अगला लोकगीत।

वाकई में दावड़ो धीरे पड़ जा रहे। जी हाँ, जैसे चिल मिलाती भी जो धूप आ रही है उसको देख करके, उसको महसूस करके बस यही कहा जा सकता है कि दावड़ो धीरे पड़ जा रहे। वाकई में लोक गीत में माटी री महक सुरू रो संसार राजस्थानी रो संगीत लागी सबसे प्यारो। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक लोक गीत हिवड़े से दूर।

मोर बोले रे, पपीहा बोले रे, कद बोले, जम्भारू राजस्थान बोले रे। राजस्थान का लोक संगीत दिल की भाषा है। यहाँ पर हर मौसम का गीत है, हर रिश्ते की मिठास है और हर धुन में संस्कृति का सम्मान है। कभी पनिहारी गीत मन को छू लेता है तो कभी घूमर की थाप पैर को थिरकने पर मजबूर कर देती है।

वाह जी वाह, ऐसा लगा कि जैसे पूरा राजस्थान हमारे आसपास जीवंत हो उठा हो। लोक संगीत तो वो धरोहर है जो पीढ़ियों को एक साथ जोड़ करके रखती है। आई श्रोताओं, सुनते हैं लोक संगीत के सफर का आखिरी लोकगीत।

श्रोताओं, आज के इस सुरमई यात्रा में बस इतना ही। उम्मीद है राजस्थान के लोक संगीत की ये महक आपके दिलों तक जरूर पहुंची होगी। श्रोताओं, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। फिर मिलेंगे नए गीतों, नई बातों और नई उमंगों के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव, 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स के आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से लोक संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। तो चलिए ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में। श्रोताओं, पहला गीत आप सभी के रेडियो सेट पर उदित नारायण अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। फिल्म अब लौट चले।

दोस्तों संगीत वो एहसास है जो कभी होठों पर मुस्कान बन करके आता है तो कभी दिल की धड़कनों में बस जाता है। और जब बात फिल्म संगीत की हो तो हर किसी की कोई ना कोई याद जरूर उससे जुड़ जाती है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, एक खूबसूरत और सुरीले सा वो कार्यक्रम जहां पर बात होती है बॉलीवुड के सदाबहार गीतों की, उन धुनों की जो बरसों बाद भी दिलों में जिंदा रहती है। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे ही एक याद को, एक गीत को लेकर के आए हम अलका याग्निक, कुमार सानू की मधुर आवाज में, फिल्म खुद्दार।

वाकई में कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। फिल्म संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि हर इंसान खुद को किसी न किसी गीत में ढूंढ ही लेता है। पुराने गीतों की सादगी हो या नए गीतों की ऊर्जा, दोनों का अपना अलग ही जादू है। सुनते हैं श्रोताओं अगला गीत अनुपम आमोर की मधुर आवाज में, फिल्म आक्रोश।

वाकई में प्यार एक ऐसा एहसास जिसे फिल्मी गीतों ने सबसे खूबसूरती से सजाया है। तो चलिए पेश है आप सभी के लिए एक बेहद प्यारा सा नगमा, फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो ने।

वाकई में दोस्तों, फिल्म संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी पहला प्यार किसी गीत में याद आता है, तो कभी बिछड़ने का दर्द किसी धुन में सुनाई देता है, कभी दोस्तों के साथ मस्ती तो कभी माँ की याद। हर रिश्ता, हर भावना फिल्मी गीतों ने बेहद खूबसूरती से सजाया है, और यही वजह होती है बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि उनको महसूस किया जाता है। सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण, अलका याग्निक की मधुर आवाज में।

वाकई में श्रोताओं, संगीत में यानी कि गीत में वो ताकत होती है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात को कह देता है। और सच कहें तो कुछ गीत तो ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी में दिल में दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे ही गीत आपके दिल में और दिमाग में यूं ही चलते रहेंगे। आप बने हुए अपने रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

दुनिया का सबसे खूबसूरत सा एहसास, और बॉलीवुड ने इसे गीतों में कुछ इस तरीके से पिरोया कि हर दिल खुद को इन धुनों में ढूंढने लगा है। कभी नजरों की बातें तो कभी दिल की मुलाकातें, फिल्मी गीतों ने मोहब्बत को हमेशा खास बनाया है। ऐसा ही एक खास गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, आज के इस खूबसूरत सफर में आपका साथ पाकर के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये सुर, ये गीत और ये एहसास आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए होंगे। मैं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी नए धुनों, नए गीतों और नए एहसासों के साथ। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सुरों का कारवां फिर दिल में बस गया था। नमस्कार, शुभरात्रि और मुस्कुराते रहिए। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

0: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की

0: अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा

है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है।

समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहा अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102 और साथ 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका नाम है SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने।

तो चलिए दोस्तों, मन का रेडियो भी बज चुका है। नमस्कार, आदाब, राम राम सा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। एक ऐसा कार्यक्रम जहां बातों में अपनापन होगा, मैसेजेस में भावनाएं होंगी और गीतों में जिंदगी की खूबसूरत सी धड़कने। कभी किसी की याद आएगी तो कभी कोई मुस्कुराहट भेजेगा और हम आपके हर उस एहसास को गीतों के जरिए सजाएंगे। आपको करना क्या है, बस अपना वो संदेश हम तक पहुंचाना है। कौन से नंबर पर? 9530012020। जी हाँ, 9530012020। आप कहीं पर भी हो, अपना मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप करिए और भेज दीजिए अपना वो मैसेजेस जो आप देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, वो भी चंबल चैनल के माध्यम से। जी हाँ, आप कहीं पर भी हैं, अपना कोई भी संदेश हमको पहुंचा सकते हैं और अपना गीत सुन सकते हैं। तो चलिए, मैसेजेस आना शुरू हुए हैं, जब तक सुनते हैं एक बेहतरीन सा गीत।

तो चलिए हमारे जो श्रोताओं के मैसेजेस हैं यानी कि संदेश हैं श्रोताओं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। श्रोताओं, आज के इस SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम का जो सबसे पहला संदेश आया है वो हमें भेजा है हनुमानगढ़ जिले राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। और अगला मैसेज हमारे पास में आया है, भेजने वाले हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी। और इन्होंने लिखा है माय रेडियो माय लाइफ। वाह, बहुत बढ़िया। अगला मैसेज आया है जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार जी, पुष्पेंद्र जी। और अगला मैसेज है ताज मोहम्मद अंसारी जी, गुलाब साबिर राही जी, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, श्री गंगानगर राजस्थान से बेचने वाले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। और साथ ही में दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, उमेश, राजेंद्र और मनहरन। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं एक बेहतरीन सा गीत। और हाँ, नंबर ध्यान रखिएगा 9530012020।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल की तरह ने। तो जल्द से भेजिए अपना मैसेज अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए या किसी खास मेहमान के लिए। जी हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले मैसेजेस। श्रोताओं, हमारे अगले संदेश को भेजने वाले हैं पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और डॉक्टर

सुनील जनागल। साथ ही में पंजाब गांव नथाना से एक संदेश आया है, भेजने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसवी, जस्सी जी, सीता और गीता। उन्होंने साथ में कहा है कि खुश रहो और खुशियां बांटो। और साथ ही में एक संदेश आया है पंजाब से, भेजने वाले हैं परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दुपेंदर, कुलदीप, वरिंदर, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। और साथ ही में एक और पंजाब से आया है मिंटू, टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। एक और मैसेजेस आया है हमारे पास में दुर्गा कॉलोनी हांसी से, भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। फाजिल का पंजाब से एक संदेश भेजा है सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी, और उन्होंने कहा है राम राम जी, हम प्रोग्राम को लाइव सुन रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और एक और मैसेजेस आया है, ये भेजा है ग्राम आना गांव से, और भेजने वाले हैं रानी, परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, स्वाति, वैष्णवी, प्रहलाद शिंदे और पूरा शिंदे परिवार। और एक मैसेजेस है पटियाला से, भेजने वाले हैं बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। तो चलिए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 102 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। आपको करना क्या है, सिर्फ अपना फोन उठाना है, मैसेज को टाइप करना है और भेज देना है इस नंबर पर 9530012020। तो चलिए अगले संदेशों को हम शामिल करते हैं। अगला संदेश हमारे पास में आया है, भेजा है सतना MP से कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर से, सागर, और साथ ही में उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। एक और मैसेज आया है, कोटा सिटी से आया है, भेजने वाली हैं पल्लवी, वो मैसेज दे रही हैं अपने हम सफर के लिए जिनका नाम है विकी। और अगला संदेश हमारे पास में आया है, श्री गंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हीना, हर्षित और साथ ही में खुशी गोस्वामी। अगला संदेश आया है दादरी गेट भिवानी से, भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और साथ ही में कुणाल मेहरा ने। और श्रोताओं, अगला SMS हमारे पास में आया है,

ये भेजा है डॉक्टर नंद किशोर खुशबीर सिंह, साथ ही में श्रीमती ममता कुमारी, किशन लाल और बसंती देवी ने। और ये आया है उज्जवल विहार विस्तार बोरखेड़ा कोटा से। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको ये गीत। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए अगले गीत की फरमाइश के लिए अगला संदेश। तो जल्द से अपना फोन उठाइए और संदेश भेज दीजिए।

श्रोताओं, आप भेजते रहिए अपने संदेश और हम उन्हें सुरों में सजाते रहेंगे। कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि गीतों से कही जाती है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला संदेश। अगला संदेश किसने भेजा है श्रोताओं? अगला संदेश आया है जिला सिरसा हरियाणा से, और भेजने वाले हैं सत्वी सिंह बिजारनिया, देवेंद्र जी, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या, और साथ ही में मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, सायना और निवान। पंजाब से एक और संदेश आया है, भेजा है भूषण विशु विशाल खेड़ा, लाडी शालिनी टिवांची, और साथ ही में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से एक मैसेज आया है राज पैलेस मऊनाथ भंजन से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा ने ये मैसेज भेजा है। साथ ही में शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। अंबाला हरियाणा से एक संदेश आया है, भेजा है रवि कुमार राहुल ने, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द, राहुल, विजेंद्र, जयजान, और साथ ही में रिंगनी छत्तीसगढ़ से एक संदेश आया है, भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। सीकर राजस्थान से दातारा सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, साथ ही में गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। और अगला संदेश हम लेते हैं, आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने भेजा है। देखिए, जब नामों को शामिल कर लिया जाता है ना, तो एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ, हमारा नाम जो है आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। तो वाकई में हर मैसेज के पीछे, हर संदेश के पीछे एक कहानी होती है, और दोस्ती हो, प्यार हो या यादें हो, हर एहसास का एक अपना ही गीत होता है। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत मोहम्मद रफी की मधुर आवाज़ में।

तो चलिए श्रोताओं, अगला मैसेजेस यानी कि अगला संदेश हम लेते हैं कि अगला संदेश जो है हमें किसने भेजा है। भेजने वाले हैं हितेंद्र दास और ये मैसेजेस यानी कि संदेश आया हमारे पास में आसाम से। अगला संदेश आया है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और साथ ही में अंकित ने। अगला संदेश एमपी सागर से, भेजा है उमंग मलिक, आकांक्षा, माही मलिक ने। अगला संदेश गोविंदपुरा सीकर से, भेजा है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से संदेश आया है, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। साथ ही में मध्य प्रदेश से एक मैसेज आया है, भेजा है गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और साथ ही में रमेश चंद्र डांगी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से एक संदेश आया है, भेजा है ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और साथ ही में आशीष ने।

बाकी मैं सोता श्रोताओं कुछ संदेश कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो दोस्ती से भरे होते हैं। और सच कहें तो दोस्ती तो वो रिश्ता होता है जहां पर बातें कम होती है और समझ ज्यादा होती है। कुछ मैसेज कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं और कुछ सीधे दिल में उतर जाते हैं। बहरहाल अगला गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपको अगला गीत, लेकिन उस गीत को सुनने की फरमाइश किसने की है, सुनवाते हैं। डबवाली से ये संदेश आया है, भेजा है राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित लकी तानिया नारंग ने, और साथ ही में दिल्ली से ये मैसेजेस आया है, भेजने वाले हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, और जनकपुरी से पिंटू दीवाना, और साथ ही में राजेंद्र सिंह ओबेरॉय जी। अगला संदेश आया है कलानौर से, भेजा है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक ने। अगला संदेश महाराष्ट्र अकोला से अनिल दंदी, उमा वैदही और वैद्युर्य ने ये संदेश भेजा है। जाफराबाद से ये संदेश भेजा है सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, सर्वर्द, प्रणाली, सानवी और साथ ही में कल्पना देशमुख ने। और अगला संदेश हनुमानगंज राजस्थान से भेजा है विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और युधव ने। तो चलिए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर ये गीत, फिल्म कयामत से कयामत तक। श्रोताओं, इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वाकई में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बड़ा काम भी करेगा। देखिए, ख्वाब तो सभी के होते हैं, अब वो ख्वाब हकीकत में किसके बदलते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पर, आपकी मेहनत पर। तो चलिए लेते हैं हमारा अगला संदेश, और संदेश को भेजा है हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और साथ ही में प्रियंका शर्मा ने। अगला संदेश है मानपुरा साबिस जिला मुरादाबाद से, भेजा है शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और साथ ही में शेख हबीबुर्रा रहमान ने। और अगला जो संदेश है वो आया है चंडीगढ़ से, भेजा है सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। SMS के बहाने चंबल चैनल की तराने प्रस्तुतकर्ता जी को सादर प्रणाम और नमस्कार। हमारा गीत शामिल करें और हमारे जो संदेश है उसको भी शामिल करें। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी। साथ ही में फजलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी जी और सारा मायल। गांव खोखरा वाली से भेजा है विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। तो चलिए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये बेहतरीन सा गीत।

लीजिए श्रोताओं, शामिल करते हैं इस सफर का आखिरी संदेश। भेजा है सुशील, आरव, ज्योति, तरुण, नेहा और दिव्या ने, और ये मैसेज आया हमारे पास में कोटा शहर से। वाकई में हर मैसेज के पीछे, हर संदेश के पीछे एक कहानी छुपी होती है। दोस्ती हो, प्यार हो या यादें हो, हर एहसास का एक अपना ही गीत होता है। SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने दिल से दिल जोड़ते रहेंगे।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत, आपसे लेती हूं इजाजत। फिर मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में कुछ नए मैसेज, कुछ नए गीत और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए SMS के बहाने चंबल चैनल की तरह ने।

दोस्तों, देखते ही देखते हमारे साथ बिताया हुआ ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। वाकई में आज के इस कार्यक्रम को बेहद आपने खास बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गीत खत्म हो सकते हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई यादें हमेशा दिल में ही रहती हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

शाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश, तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का, नजर में कह

खैर को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा आँख में

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा आंख में दिल

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काले घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

दास्तानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

श्रोताओ, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार

0: रात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।